हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।
3: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371800-3920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राओ दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
6: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी।
7: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, हीउ ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
6: जेकॾहिं तव्हां खे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
9: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: थींदड़ ॻाल्हियुनि ते बहस लाइ रिथ मंज़ूर करे वरिती। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह जी सदारत हेठि थियो। पीपल्स पार्टी सिंध जे सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवनि सूबनि बाबति थींदड़ बहस जे हवाले सां रिथ ऐवान में पेश कई, जेका मंज़ूर कई वई। स्पीकर अवेस कादिर शाह चयो आहे त रिथ ते सूमर वारे ॾींहुं 2 कलाक बहस कयो वेंदो। रिथ में चयो वियो आहे त पाकिस्तान में नवनि सूबनि ऐं यूनिट्स जे हवाले सां बहस थी रहियो आहे, जंहिंमें सिंध जे सरहदनि सां बि छेड़छाड़ वारा नुक़्ता शामिल आहिनि। मामूल जी कार्रवाई मुअत्तल करे हिन मामले ते बहस कयो वञे।

0: सिंध असेंबली जा मेंबर्स सूमर वारे डी नवन सूबन के मामलन ऐवान में बहस लाय तैयार। पीपल्स पार्टी जे एम क्यू एम के सिंध के विरहांगे वो ख्वाब न डिसण की सलाह। सूबाई वजीर एम पी एज है सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ एक न पर केतरा भेरा ठहराव मंजूर थी चुका है। सिंध असेंबली एक भेरो वरी ठहराव मंजूर कर वठंदी। नंढड़ी अस्पताल न संभाले सकंदड़ सूबो कि संभालींदा। नवन सूबन बाबत फैसलो अवाम जो हों। पीपल्स पार्टी अवाम से गड है। सिंध विरहण की गाल कंदड़न से अवाम ही गड ना है। एम क्यू एम के दोस्त के भी ठहराव की हिमायत करण घुर्जे। मुखालिफ धुर अगवान अली खुर्शीद है तो उन्होंने पुरानो मुतालबो रो है तो नवन सूबन के मामले से बहस थियण घुर्जे पर हाँ पीपल्स पार्टी वारन पान बहस लाय रिथ जमा कराई है। गवर्नर्स के बेहतर बनाने लाय इंतजामी यूनिट्स डां वजण पवंदो। तहरीक इंसाफ के मेंबर सजाद सुमरे भी नवन सूबन की मुखालफत कंदे है तो पे आवाम जहा मसला हल कर डेखारो कोई सूबन की गाल कयो। मौसमियात खाते पंजाब ए केपीके में अज का तेज बरसात जो सिलसिलो शुरू थे अक थी कर छी आवाम के लैंडस्लाइड
1: मुखनिहारी को वाइप कर देगा। कौन
2: ब्राइट? क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले।
0: कोट की भरसा लोडर रक्षा वाह में किरण सबब बुधी वेल चयन बारन मां टिन जो भी लाश हथ अची वो है। बारह वरन के मीर मोहम्मद गोपांग जो 36 कलाकन बाद मेहरान भरसा लाश मिली वो है। उन अग 13 साल के जुनेद ए लाहौती गोपांग जो लाश मिलो हो। 11 वरन के मुंतजिर मेहदी गोपांग की गोल्हा जारी है। नींदर मीर मोहम्मद गोपांग जो लाश पहुंचण के इलाके में सोग छाइजी वो है। आलिन नखिन सा बड़े मिटी माओ हवाले के
3: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में

0: रॉयल इन्वर्टर फैंस, साथ जिंदगी भर का।
1: किसी दूसरे के नाम पर जायदाद खरीदना एक संगीन जुर्म है जिसे बेनामी ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये जुर्म कई शक्लों में हो सकता है, मुलाजमीन या रिश्तेदारों के नाम पर अकाउंट्स, जायदाद या
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
4: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।
8: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
9: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल,
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
9: जी हा, 2315525786।
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क,
9: सिंध जो आवाज़।

0: मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे एतबार किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे।
3: दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे, रोके सभी वाले मगर क्यों चाहतों के रास्ते।
4: अल्लाह, अगर वो आरिस की मोहब्बत से वाकिफ है तो मेरी मोहब्बत से वाकिफ क्यों नहीं है वो।
1: आशा,

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को छलनी की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर उनके सामने तमाशा बन गई। मामा
3: आशा, आशा, आशा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट।
2: एक बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।

मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी।

0: 810 31 843 842।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
4: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 0331252578।
4: जी हाँ 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अक्सर मान जो सवाल तो असा के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असा वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ हाई रिस्क हुंदा आन उने के अलावा असा जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तमा के वैक्सीन जे लाए उमर जी हद कोने कैंप जगह ते वैक्सीन कैंप उमर ते पोलियो लगी सके तो कै उमर ते वैक्सीन करे सके पर रेशियो वधी का 10 साल के घटा तंजे करे असा जो रिक्वेस्ट आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए
3: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़ सीने जी जलन खटियूं उघरायूं बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-24-01-287 शिफ़ाए मैदा कोरस सेहतमंद मैदो सेहतमंद ज़िंदगी
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरिया सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है और वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM

0: फील्ड मार्शल सैदास मुनीर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो जदीद हथियारन जे ट्रायल जो मुशाहिदो कयो आईएसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल के इदारे जे मुख्तलिफ शोबन में ऑपरेशन्स मकामी सतह ते तैयार थींदड़ जदीद हथियारन बाबत ब्रीफिंग डिनी वई फील्ड मार्शल मकामी तौर ते तैयार कयल जदीद हथियारन जी टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो कयो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मकामी पैदावार सलाहियतनि ऐं टेक्निकल में जिदत जो अज़म वरचायो
1: वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जे दौरो जाली कागज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी हिदायत घरू वज़ीर इमीग्रेशन काउंटर ते बि कम कार जो जाइज़ो वरितो मोहसिन नकवी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादिल इंतज़ाम हुजणु घुर्जे इमीग्रेशन जो अमल बंदि न थियणु घुर्जे।

0: ईरान जी इजाज़त खां सवाइ को बि जहाज़ आबना हरमुज़ मां गुज़री न सघंदो। पासदार इनकलाब जो अमरीकी सदर जे आबना हरमुज़ खोलण वारे बयान ते रद अमल। पासदार इनकलाब मूजिब अमरीका नाकामियूं लिकाइण लाइ कूड़ा बयान ॾेई रहियो आहे। ईरान ख़िलाफ़ जेसि ताईं अमरीकी फ़ौजी कार्रवायूं ख़तम न थींदियूं तेसि ताईं आबना हरमुज़ में मुदाख़लत बर्दाश्त न कंदियूं।
1: अमेरिका वेंज़ुएला जे 58 अरब बिलर खां वधीक तेल जे ज़खीरनि ते कंट्रोल हासिल करे वरितो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त अमेरिका वेंज़ुएला सां दुनिया जी तारीख़ में तेल जो सभ खां वॾो मुआदो कयो आहे। हिन मुआदे सां वेंज़ुएला खे वॾी कामयाबी ऐं खुशहाली मिलंदी। अमेरिका ऐं वेंज़ुएला में लाॻापा वधीक मज़बूत थींदा।
0: मौसमियात खाते पंजाब ऐं केपीके में अॼु खां तेज़ बरसातनि जो सिलसिलो शुरू थियण जी अक थी करे छॾी। अवाम खे लैंडस्लाइडिंग खां मुहतात रहण जो मशवरो। मौसमियात खाते चयो आहे त अॼु खां 5 सेप्टेम्बर ताईं पंजाब ऐं केपीके में तेज़ बरसातूं पवंदियूं। मथां इलाइक़नि में लैंडस्लाइडिंग जो बि ख़तरो आहे।
1: कोटड जी भरसां मीरवा केनाल में ॿुॾी वियल चोथे ॿार जो लाश बे हथ। ॿ ॾींहं अॻु रक्षा हूंदो थियण सबबि चार नींगर मीरवा केनाल में ॿुॾी विया। 36 कलाकनि बाद ॿुॾी वियल ॿारनि वारनि जे मीर ममन जो लाश बे हथ कयो वियो। नींगर जो लाश घर पहुचण ते कोहराम मची वियो।
0: कुंडरी वेझो फसल जे भेल तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, कुआड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबबि 5 ॼणा मरणी। ॻोठ लखानो रिंद में फसल जे भेर तां रिंद ऐं भील बिरादरी में झेड़ो थियो। झेड़े में कुहाड़ियूं ऐं लठियूं सबबि भेल बिरादरी जा 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया। ज़ख़्मीनि खे तालके अस्पताल कुंडी नियो वियो। हमिलो कंदड़ फरार थी विया।

0: इलाके में सिंधु दरिया जो पानी तेजी से जमीनू पाने लगो। बोड़ा पतन वाले हंध पानी जो दबाव वन सब सूरत हाल गणती जोगी पानी अज तेज वकरे जमीन में खाद सबब गोठ में कायम स्कूल लुड़ी वो मुतासर गोठान जो हुकूमत का बोड़ा पतन वाले हंध हिफाजती उपाय वन जो मुतालबो।
1: सोलर बैटरी से
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
6: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
7: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
8: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2301-43-842।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
11: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
11: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03132525786
9: जी हा 3135525786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
3: करो छो।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: करते रहो।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अक्सर मां जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छोती डी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके पर रेशो 10 साल का घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
4: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371-1800-3920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राबितो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 0300-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: खुशखबरी,
0: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
8: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 0331-252-5786।
8: जी हाँ 2315-25-786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अक्सर वालदेन सवाल की दा हैं तो जड़े असा जे बारन के पोलियो वैक्सीन लगी चुकी आ है तो हाने बाद में उनन के केड़ी जरूरत पड़े थी। मोजो नालो हाफिज मोहम्मद इस्लाम नूनारी आ है। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आ है। ये असा जे के बार हन तो असा जी मामूली गफलत जे करे जिंदगी भर माजूर रह जी वजन था। अगस्त में 10 साल तई जे बार हैं पोलियो बूस्टर डोज जो है वो लाजमी लग रहा है। पोलियो जहाँ कुछ अगर जरात रह जी भी वह अल्लाह के हुक्म से खत्म थी वेंदा ए बचो हमेशा के लिए महफूज रहंदो बियन के लिए भी माजूरी सबब न बनबो।
5: कैश किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पक्यू छिटू लगरा लाए खुश खबरी चाहो था अवां जे घरन जो छिटू पक्यू हुजन त कैश किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जो इख्तियार वजीर आजम के दिनों वो है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वा जो दौरों जदीद हथियार के ट्रायल जो मुशाह किया। एसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल के इदारे के मुख्तलिफ शोबन ऑपरेशन मकामी सतह से तैयार थन्दड़ जदीद हथियार बाबत ब्रीफिंग डिनी वही। फील्ड मार्शल मकामी तौर से तैयार कल जदीद हथियार के तेज ट्रायल जो भी मुशाह किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पान भरो थे मकामी पैदावार सलाहित टेक्निकल में जदीद जो अजम वरजाय। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो दौरो जाली कागजन से सफर कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। घरू वजीर इमिग्रेशन काउंटर से भी कमकार जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी चयो तो सिस्टम डाउन थियण की सूरत में मुकाबिल इंतजाम हुजण घुर्जे इमिग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे। ईरान की इजाजत का सवाए को भी जहाज आपना हरमुज में गुजरी न सकंदो। पासदारन इंकलाब जो अमेरिकी सदर जे आपना हरमुज खोलण वाले बयान ते रद्द अमल। पासदारन इंकलाब मूजिब अमेरिका नाकामियों लिकाण लाए पूरा बयान दे रो है। ईरान खिलाफ जेस ताई अमेरिकी फौजी कार्रवाई खत्म न थी तेस ताई आपना हरमुज की मुदाखलत बर्दाश्त न कबी। अमेरिका वेंजुएला के 65 अरब बैरल का तेल के जखीरन से कंट्रोल हासिल कर वरतो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो अमेरिका वेंजुएला से दुनिया की तारीख में तेल जो सब का वो मुआहदो है। उन मुआहदे से वेंजुएला के वही कामयाबी और खुशहाली मिली। अमेरिका वेंजुएला में लागापा मजबूत थन्दा। सिंध में एचआईवी के वधंदड़ केसिस की शफाफ जांच लाए आजाद कमीशन जोड़ो वे। एमक्यूएम के आमिर सदीकी ठहराव सिंध असेंबली में जमा कराए छो। कराची के विलिका अस्पताल में सामू आयल एचआईवी केसिस की जांच जो मुतालबो लागापियल ऑफिसर के भी अहदे त हटाने की घुर। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करने जो हुकुम। केस से जुड़ियल समूरन पुलिस ऑफिसर ने डॉक्टर समेत समूरो मानून की लिस्ट पेश करने की हिदायत। कमीशन गुजरियल डी थियल जांच के लिखित में हुकुम जारी कर छो। अदालती कमीशन है तो मीर रजा जो सब का पे लाश दिसंदड़ नर्सरी मुलाजमन के भी नोटिस जारी किया वे। पुलिस मोबाइल के इंचार्ज एहलकार भी पेश किया वे। कोर्ट डिजी भरसा मीरवा कैनाल में बुढ़ी वेल चौथे बार जो भी लाश हथ आयो है। 36 कलाक बाद बुढ़ी वेल 12 वरें जे मीर मोहम्मद जो लाश भी हथ कर वो। बी अग रक्षा ऊंदो थियण सबब चार नींगर मीरवा कैनाल में बुढ़ी वया हुआ। टिन नींगरन जा लाश गुजरियल ॾींहं मिलिया हुआ। कराची की अदालत 8 साल के नींगरी हबीबा के गटर में किरी फोत थियण वाले केस जो फैसलो बुधाए छो। कराची वार्ड बोर्ड के महीने अंदर नींगरी के वालदेन के 1.5 करोड़ रुपया मुआवजो अदा करण जो हुकुम। 2021 में 8 साल की नींगरी हबीबा हॉक्स बे के शेर मोहम्मद गोठ में खुलियल गटर में किरी फोत थी वही हुई। मटियारी भरसा नायच ए कोसा बिरादरी के बिन धुरन में थियल झेड़े जो एक जख्मी पोत झेड़े दौरान जख्मी थियल मुबारक वलिद हमजो कोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम दिनो। कोसा नायच धुरन में मामूली गाल थियल झेड़े में 5 जणा जख्मी थे। कुंडरी वेझो फसल के भेल त बिन धुरन में झेड़ो कुआरियों लठू लगन सब 5 जणा जख्मी। गोड लखानोरन में फसल के भेल त रिंद भील बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो थो कुआरियों लठू सब भील बिरादरी जहा 5 जणा जख्मी थे। शादातपुर का भिटशाह ताई सूफिन जो सिंध इम्कानी विरांगे खिलाफ प्यादल मार्च शुरू। मांझी फकीर की क्यादत में निकल प्यादल मार्च में सूफिन शहर के वे अंग में शिरकत। अगवाणन सिंध सूफिन वलिन की सरजमीन है। सिंध के विरहण वाली साजिश केर भी कबूल न कर। हैदराबाद में सरकारी अस्पताल की नर्सिंग पैरा मेडिकल स्टाफ पारा अस्पताल के पीपीएचआई हवाले करने खिलाफ रैली। मुजाहरीन सिविल अस्पताल का प्रेस क्लब हैदराबाद तीन प्यादल मार्च के एहतजाज कर। मुजाहरीन है तो अस्पताल के पीपीएचआई हवाले करो फैसलो कबूल न है। फैसलो वापस वो सखर में मंशियात जे विकरे खिलाफ शहरनि जो एहतियात मंशियात विकरो करण खिलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो साइल थाणे जे हद अलाहाबाद कॉलोनी जे रहवासियुनि मंशियात जे विकरे खिलाफ़ एहतियात कयो। मुज़ाहिरन मौजूद पुलिस शिकायतनि बावजूदि मंशियात फरोशनि खिलाफ़ कार्रवाई न करे रही आहे। ऐं नओं डेरो भरिसां कच्छ जे इलाइक़े में सिंधु दरिया जो पाणी तेज़ीअ सां ज़मीनूं पाइण लॻो। ॿुड़ा पतण वारे हंध पाणीअ जो दॿाउ वधण सबब सूरत हाल गणती जो बि पाणीअ जे तेज़ वहिकरनि ऐं ज़मीन में खाद सबब
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उगरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-8879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
4: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बेहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नियामत आहे। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
6: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
10: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
11: खुशखबरी शहर मातली में अवां जो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन के सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरानी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियों जो इलाज बार जो न थियण बांझपन।
8: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरानी हाने रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
8: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
10: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
10: हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
10: जी हाँ 2311-25-25-786।
8: GFM रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद माजिजों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सैनिक दंगल का तमाम खूबसूरत मौसम सुनने समातम की मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। समंदर चाहतों की बारिश और लाजमल खजानों के साथ दुआ ही परसे तरह से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक जाते समय से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चांस से पाते हमसे खुशी तक फिर से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों की सैम सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सखरन मेहरापुर माथली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं चलते के नाम मस्ती। बिल्कुल जी, प्रोग्राम चलते के नाम मस्ती में आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। प्रोग्राम आप लोगों का अपना है जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। प्रोग्राम में फन होगा, प्रोग्राम में बातें होगी, प्रोग्राम एंटरटेनमेंट होगा और उसके अलावा आप लोगों के लिए होगा जनाब बहुत ही अच्छा सा म्यूजिक कलेक्शन। बिल्कुल जी, सो रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ प्रोग्राम में मजे करने के लिए, हमारे साथ साथ जुड़ने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। ओके जी, तो आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और शहदों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, द वे इज इंटिंग मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब इस प्यारे खूबसूरत से प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम के साथ साथ जरा पूछेंगे आपके हाल चाल भी। सो डियर लिसनर्स, अंत की हालत उन कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है प्रोग्राम में ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। इसी दौरान आप हमें ज्वाइन भी करने वाले हैं, आप हमें मैसेजेस करेंगे और आपके साथ बातें की जाएंगी। और जनाब यहाँ पर बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए आने के फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी, ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहीं वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होठों पर 440 उल्की समा लाने का काम करती हुई रानी सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होठों पर 440 उल्की समा लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम करेंगे जी सबसे पहले और आगे से प्रोग्राम आप लोगों को सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी नात। तो बहुत ही प्यारी नात हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो आइए जरा सबसे पहले हम नात को सुन लेते हैं और नात सुनने के बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं 88 नेटवर्क प्रोग्राम चलते का नाम मस्ती, आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे।

म्यूजिक या बात बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी नाच जो कि हमने यहाँ पर सुनी, और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चलते के नामस्ते। आपके सदर आपके साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे। आप हमारे साथ मौजूद है, आप जिंदा है, मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार होने वाले हैं बताते हैं, लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम का टॉपिक भी बताते हैं। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो जरा गौर से सुनिएगा, ताकि अगर आप हमें मैसेज करें तो आप टॉपिक के ऊपर बात लाजमन किया करें। अच्छा, तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे बताएं कि एक इंसान जो होता है वो दूसरों की प्रॉब्लम में सलूशन जो है वो जल्दी दे देता है। यानी कि अगर आपसे हम किसी भी मसले की जो ना वो प्रॉब्लम के बारे में अगर बात करते हैं कि भाई मेरे साथ ये मसला चल रहा है, अगला इंसान मुझे जल्दी में जो है ना उसका सलूशन बता देता है, लेकिन जब बात अपने पर आती है, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अपने लिए वो जो सलूशन होते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इतना इजीली कैसे वो दूर नहीं कर पाता जैसे वो लोगों को मशवरे देता है। भाई ये क्या सीन है, अगर इंसान दूसरों की प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है वो जल्दी से दे देता है लेकिन अपनी प्रॉब्लम का सलूशन उससे इजीली नहीं मिलता, ऐसा क्यों? आखिर आप मुझे बताइए, जल्दी से गिरा जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 888-1414। और जनाब अगर आप मुझे या फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, यानी कि आपकी हर रेडियो की आवाज नहीं पहुंचती, आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आप जैसे ही आते हैं वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट नहीं कर सकते बल्कि आप हमारी पोस्ट को शेयर कर दीजिएगा। तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए। और मुझे बताइए, जब एक इंसान से हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं तो उसके पास हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जल्दी से बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं, लेकिन जब इंसान खुद किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है तो उसके पास इतना जल्दी उस प्रॉब्लम का हल क्यों नहीं आता? ये एक ऐसा सवाल है जो कि मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ। बिल्कुल जी, पूछ लिया, इसका जवाब आप लोग मुझे दीजिएगा और जल्दी से मुझे ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपके बिल्कुल मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, मैसेजेस करते जाइए, ऐसे ही आप लोगों की मोहब्बतें अगर रही तो भाई क्या बात है, हम तो धन्य है जनाब। और साथ साथ आप ऐसा कीजिए, फेसबुक वाले लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। टाइम हो गया है जनाब, यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने चाहते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे। आपने बस कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं आप साथ स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88 नेटवर्क। आप सुन रहे हैं चलते के नाम मस्ती।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो ग़ुलाम अली रोड, मातली।
6: खु़शख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो ग़ुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़,
8: GFM 90.4.

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियो जो त असा जे बार पेरी पोलियो का कतरा पी चुको है। मुंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण सा बार जी इम्यूनिटी जका वा बेहतर थिए थी। हाणे जका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
6: मैसेज करते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ फेसबुक पर सुनते जा रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है उनको भी वेलकम कहा जाता है, बाकी जो लोग हमें सुन रहे हैं सभी को वेलकम एंड खुशामदी। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। जिन लोगों ने अभी अभी सुनाया स्टार्ट किया होगा उनको नहीं मालूम कि आज के प्रोग्राम में सवाल आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल ये पूछा है कि एक इंसान जो है वो दूसरों की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन तो जल्दी से दे देता है, जल्दी से बता देता है कि भाई हाँ तुम्हें ये मसला चल रहा है इसका हल ये हो सकता है, लेकिन जब अपनी प्रॉब्लम का टाइम आता है, अपनी लाइफ में मसले चल रहे होते हैं, तो उनका हल उनका सलूशन उसके पास इतना जल्दी क्यों नहीं आता? ओके जी, सवाल का मुझे जवाब बताइए, जल्दी से मुझे ज्वाइन करते जाइए क्योंकि आपके मैसेजेस प्रोग्राम की जान होते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ बिल्कुल आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी और आपके मैसेजेस की जान है बिल्कुल आते हैं, बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ करनी है, तो जरा मैसेजेस की जानें बात आते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे साथ ही सबसे पहले जो मुझे मैसेज किया है वो चाचा खालिद जुने जो ने किया है, कहते हैं बेटा सिद्धू अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, कहाँ गायब हो, कोई खबर चार ही नहीं आपकी, थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी थी। और उसके अलावा फहीम शेख हमारे साथ कहते हैं अदा छा अला खुशाही सॉन्ग बिल्कुल तांजी पसंद जो गानो हलाई था फहीम भा तांजो मोहब्बत वाइन प्रोग्राम बुध पाया। और कश्मीर से अखलाक बलोच हमारे साथ ही हाय सदरा नाइस शो प्ले गानो लिखियो आ तव्हां हाज़िर गानो हलायूं था। अच्छा, बेहो से गड मौजूद है चाचा खालिद, कहते हैं बेटा सॉन्ग की रिक्वेस्ट है ओके चाचा तां जो गानो हलायो था। और फहीम भाई कहते हैं अदा कमेंट ओपन होते हैं तो सर खालिद के कमेंट्स के कमेंट्स भी रीड करता हूँ और अब चुप होकर शो सुन रहा हूँ, मेरा सलाम देना सर को। ओके जी, आपके सलाम सर तक पहुँच चुके हैं, वैसी अच्छी बात है, सुकून से प्रोग्राम सुने अब कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं। और हमारे साथ है ये गुड आफ्टरनून एंड वेलकम स्वीट बुआ जी, वेलकम टू यू प्यारे भाईजान MZ भाई, मासूम MZ भाई, क्या बात है जी, कितने मासूम है बताएं जरा। और बाकी तो ठीक है, आपको वेलकम कहते हैं। और उनके अलावा आसिम हमारे साथ हैं, आसिम कहते हैं आप ही शिद्दो कैसी हो, आप ही शिद्दो बिल्कुल ठीक ठाक है, और गाना भूला है आपने भी, मैं गाना चलाने की कोशिश करूंगी। और लिखा है अपना प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते तो भाई किसी और को मशवरे क्यों देते हैं लोग, ये भी तो सोचे ना कि हर किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो जाहिर सी बात है ऐसी तो नहीं होती कि दूसरों की प्रॉब्लम है तो भाई चलो इजी ले लेते, लेकिन अपनी बारी जब आती है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ऐसे मत किया करो। और ये मौजूदी अस्सलाम वालेकुम गोठ मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू भाई शो तुम्हारा जबरदस्त आए, थैंक यू वेरी मच हबीबुल्ला भाई। और हैं जी फहीम कहते हैं टॉपिक पता नहीं दादा आप बताएं, मैं तो बताऊंगी लेकिन आप भी तो थोड़ा सा बताएं ना। और जी चले बिल्कुल बताने और सुनने वाली जो बारी ना ये पूरे प्रोग्राम में ही कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हमारे पास जो गाने आप लोगों को सुनाने के लिए है तो जरा हम वो गाने भी साथ साथ सुन लेते हैं। ये है जी एक अच्छा सा गाना और AI तो लिमिटेड था मतलब इंग्लिश और उर्दू गाने बनाने के लिए, लेकिन सिंधी गाने अब सिंधी गानों की तरफ भी आ चुके अब कैर नहीं सिंधी सिंगर्स का भी, तो चलिए ये गाना एंजॉय करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन गाना अच्छा है, एंजॉय कर लेंगे। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं चलती गाना मस्ती, आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, आइए मिलकर ये प्यारा सा गाना एंजॉय करते हैं।

चले समझ में थोड़ा भले कम ही आया लेकिन गाने की वाइब बड़ी अच्छी थी, सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ये जो आपके गानों की फरमाइशें आती जा रही है ना, अच्छा ये सिर्फ मुझे ही लगता है कि जब मैं बोलती हूँ तो ऐसे तूफान तूफान सा फील होता है, ये मुझे ही लगता है या फिर आपको भी ऐसा महसूस होता है, मुझे बताएं जरा थोड़ा सा ताकि मैं इस चीज को समझ जाऊं कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर आपकी यहाँ भी आवाज ऐसी आती है कि ऐसा लगता है भाई सिद्रा जो है वो बात करे लेकिन साथ साथ तूफान भी चल रहा है पीछे। आप बताइएगा और इसी के साथ साथ एक और गाना हमारी लिस्ट में है तो वो भी जरा हम लगा लेते हैं जी लिस्ट में। ये गाना होने वाला है बलोची गाना और बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस गाने को भी सुनेंगे, फरमाइश है जी अखलाक भाई की, सो लेट्स एंजॉय।

तो गाना एंजॉय कर रही है और गाने के साथ साथ हम जरा जाने लगे हैं न्यूज ब्रेक की जाने। उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। जल्दी का नाम मस्ती, आप सुन रहे हैं GFM 88.9 नेटवर्क।

0: शगुन से गृह इलाज ऐं सहूलियतुनि जी ज़िक्र कयो वियो। साने ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ तकड़ी कार्रवाई करण जी सिफ़ारिश कई वई। ज़रियुनि जो चवण आहे त रिपोर्ट पब्लिक करण जो इख़्तियार वज़ीर आज़म खे ॾिनो वियो आहे। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी वाह जो दौरो, जदीद हथियारनि जी ट्रायल जो मुशाहिदो कयो। एसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल खे इदारे जे मुख़्तलिफ़ शोबनि, ऑपरेशन्स ऐं मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। फील्ड मार्शल मक़ामी तौर ते तयार कयल जदीद हथियारनि जे टेस्ट ट्रायल जो बि मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियण, मक़ामी पैदावार सलाहियतनि ऐं टेक्निक में जदीद जो अज़म वरजायो। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो दौरो, जाली कागज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी हिदायत। घर वज़ीर इमिग्रेशन काउंटर्स ते बि कमकार जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नक़वी चयो आहे त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादल इंतज़ाम हुजणु घुर्जे, इमिग्रेशन जो अमल बंदि न थियणु घुर्जे। ईद खां सवाइ को बि जहाज़ आबना हरमुज़ मां गुज़री न सघंदो। पासदार इनकलाब जो अमेरिकी सदर जे आबना हरमुज़ खोलण वारे बयान ते रद अमल। पासदार इनकलाब मूजिब अमेरिकाउनि लाइ कूड़ा बयान ॾेई रहियो आहे। ईरान ख़िलाफ़ जेसिताईं अमेरिकी फ़ौजी कार्रवायूं ख़तम न थींदियूं तेसिताईं आबना हरमुज़ में मुदाख़लत बर्दाश्त न कबी। पीपल्स पार्टी पिम साने जी जांच रिपोर्ट पब्लिक करण जो मुतालबो करे छॾियो। पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवर शाह ख़ान चयो आहे त पीपल्स साने जूं शाहिदियूं मटाइण जी कोशिश थी रही आहे। पिम्स खे टिनि सालनि दौरान 22 अरब रूपिया मिलिया आहिनि। रक़म किथे ख़र्च थी ऑडिट कराई वञे, पिम्स साने खे लिकाइण न ॾिनो वेंदो।
1: मतलब 5 साल की बची उसके साथ सिर्फ प्यार किया जाता।
2: इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा।
0: केपीके जे वॾे वज़ीर सुहेल आफरीदीअ जे हरीपुर में ज़्यादती बाद क़तल कयल मासूम आयत नूर जे घर आमद, वालदेन सां ॾुख ऐं हमदर्दीअ जो इज़हार। सुहेल आफरीदी नीगरी आयत नूर जो ज़िक्र कंदे लुड़ लाड़े वेठो। आयत नूर जे वालिद खे मुकमल इंसाफ़ ॾियण जी ख़ातिरी बि कराई। सिंध में एचआईवी जे वधंदड़ केस जी शफ़ाफ़ जांच लाइ आज़ाद कमीशन जोड़ी वञे। एमकेएम जे आमिर सदीकी ठहराउ सिंध असेंबली में जमा कराए छॾियो। कराची जे वलीका इस्पताल में साम्हूं आयल एचआईवी केसिस जी बि जांच जो मुतालबो। लाॻापियल आफ़ीसरनि खे बि उहिदे तां हटाइण जी घुर कई वई। कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारां केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करण जो हुकुम। केस सां जुड़ियल समूरनि आफ़ीसरनि ऐं डॉक्टर समेत समूरनि माण्हुनि जी लिस्ट पेश करण जी हिदायत। कमीशन गुज़िरियल ॾींहं थियल जांच जो लिखित में हुकुम जारी करे छॾियो। अदालती कमीशन चयो आहे त मीर रज़ा जो सभ खां पहिरीं लाश ॾिसंदड़ नर्सरी मुलाज़िमनि खे बि नोटिस जारी कयो वञे। पुलिस मोबाइल जे इंचार्ज ऐं अहलकारनि खे बि पेश कयो वञे। कोडी जी भरिसां मीरबाग केनाल में ॿुॾी वियल चोथें ॿार जो लाश हथु। 36 कलाकनि बाद ॿुॾी वियल 12 वरनि जे मीर मोहम्मद जो लाश हथु कयो वियो। 2 ॾींहं अॻु रक्षा ऊंदो थियण सबब 4 नींगर मीरबाग केनाल में ॿुॾी विया हुआ। 3 नींगरनि जा लाश गुज़िरियल ॾींहं मिलिया हुआ। कराची जी अदालत 8 सालनि जे नींगरी हबीबा जे गटर में किरी फोत थियण वारे केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। कराची वाटर बोर्ड खे महीने अंदरि नींगरीअ जे वालदेन खे 1.5 करोड़ रूपिया मुआवज़ो अदा करण जो हुकुम। 2021 में 8 सालनि जी नींगरी हबीबा हॉक्सबे जे शेर मोहम्मद गोठ में खुलियल गटर में किरी फोत थी वई हुई। मटियारी भरिसां नायच ऐं खोसा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में थियल झेड़े जो हिकु ज़ख़्मी फोत। झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल मुबारक वलिद हमदो खोसो सिविल इस्पताल हैदराबाद में दम ॾेई छॾियो। खोसा ऐं नायच धुरियुनि में मामूली ॻाल्हि तां थियल झेड़े में 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया हुआ। कुंडरी वेझो फसल जे भेल तां ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो, कुआड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबब 5 ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ लखानो रिंद में फसल जे भेल तां रिंद ऐं भील बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। कुआड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबब भील बिरादरी जा 5 ॼणा ज़ख़्मी थिया। शादतपुर खां बिरशा ताईं सूफ़ियुनि जो सिंध इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ पियादल मार्च जारी। मांझी फकीर की क्यादत में निकल पैदल मार्च में सूफिन शहर जो वरी अग में शिरकत। अगवाणन चुना सिंध सूफिन वलिन की सरजमीन है। सिंध के विरहन वाली साजिश कवेर भी कबूल न कंदो। नवीसर रोड में सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ कौम परस्त अगवाणन शहर की रैली। अगवाणन चुना सिंध के वहदत से वार बर्दाश्त न कंदी। सिंध एक है हमेशा एक रहें। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालों के नर्सिंग में पैरामेडिकल स्टाफ पारा अस्पतालों के पीपीएचआई हवाले करण खिलाफ रैली। मुजाहरीन सिविल अस्पताल का प्रेस क्लब हैदराबाद तीन पैदल मार्च कर एहतजाज कयो। मुजाहरीन चुना अस्पतालों के पीपीएचआई हवाले करण वारो फैसलो कबूल न है। फैसलो वापस वरतो वे।
3: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर KTN News।
4: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।
6: अक्सर मान जो सवाल हों असा के सही पोलियो की वैक्सीन दह साल तीन छोती डी वे तो जो असावे बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उनके अलावा असानी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तेजे तवा के वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र के पोलियो लगी सके तो कें उम्र के वैक्सीन कर सके तो रेशो दह साल के घट आ तेजे असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
7: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
8: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
9: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230। कैश ए किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पक्यू छिटू लगरा लाए खुश खबरी। छा चाहो था अवां जे घरन जो छिटू पक्यू हुजन त कैश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
11: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
5: خوشخبری خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت
12: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
5: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
12: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي
5: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود
12: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
5: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسل لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
13: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
14: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
9: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
14: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
14: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
14: 0331252576
9: जी हा 2315525786
14: GAFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़

0: के हो तो आवाज भी सिंची है। GFM 88 नेटवर्क सिंची आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: अक्सर वालदेन सवाल कंदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबब न बणंदो।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़खाना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती। आपके सदराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। और जनाब हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में, तो जिन लोगों ने अभी भी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को कहते हैं वेलकम इन खुशामदीद। आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। अच्छा जी, तो जिन लोगों ने अभी भी सुना स्टार्ट किया होगा ना, उन लोगों को जरा बताते हैं कि आज मैंने आप लोगों से सवाल क्या पूछा। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है आप लोगों से मैंने पूछा वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएं कि इंसान दूसरों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो जल्दी दे देता है अगले इंसान को, लेकिन अपनी प्रॉब्लम का हल उससे क्यों नहीं जल्दी में मिलता। अपनी जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो क्यों इतना जो है वो परेशान हो जाता है और उसको अपने मसले हल करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मुझे आज आप ये बताइए। और उसके अलावा अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आपको खुश आमदीद कहा जाता है। ओके जी, आप मुझे 888 पर ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ अगर आप हमें सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप हमें सुन रहे हैं और साथ ही फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें। ओके जी, क्या बात है, आप लोगों के साथ बातें करेंगे और बहुत ज्यादा वाली बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी होती है। कभी कभी मैं ऐसा होता है ना, यानी कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनको ना ऐसे वो जिंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी जिंदगी के बारे में बातें होती हैं। वैसे तो देखा जाए जिंदगी बहुत अजीब है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम इंसान जो होते हैं ना वो कितने खुदगर्ज होते हैं, कितने सेल्फिश होते हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं तो बगैर किसी चीज के आते हैं, यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आते। लेकिन ये चीज आपने नोटिस करी है कि हम हर चीज को हासिल करने के लिए कितना ज्यादा लड़ते हैं, रिश्ते खराब कर देते हैं, सारी चीजें इधर की उधर कर देते हैं, और जब हमें वो सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ हासिल हो जाता है, तब क्या होता है, हम अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो वही खाली हाथ चले जाते हैं, सारी चीजें वो सब कुछ ऐसी दुनिया में रह जाता है। तो इस चीज को नोटिस किया करें कि अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो ये आपका एक टेस्ट है और इस टेस्ट को अगर आप सही तरीके से नहीं पूरा करेंगे तो फिर आप जाहिर सी बातें फेल हो जाएंगे। तो फेल मत होइए और अपनी टेस्ट को अच्छे से कीजिए और इतना ज्यादा चीजों के पीछे मत भागा करें, जो आपके लिए है वो आपको बिल्कुल आकर मिलेगी। और ये भी एक चीज है कि इस दुनिया में, यानी कि पूरी इस दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो जीते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन देखिए अल्लाह पाक हर किसी को पाल रहा है, हर किसी को खिला रहा है, लेकिन एक इंसान ही है जिसके अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीजें जोड़ने की जो होती ना वो एक आस होती है कि भाई मेरे पास सब कुछ होना चाहिए। एक इंसान ही है जिनके अंदर ना मतलब या चीज हूं या तो बाबा असांखे सब कुछ करणो आहे, उनके सुभाणे जी भी गणती हूंदी आहे, उनके कल जो भी प्रॉब्लम हूंदो आहे तो बाबा कल ही सब थी वियो, सुभाणे ही सब हासिल करणो आहे, पर हालांकि खबर ना थी तो सुभाणे ॾिठो कीअं आहे। ऐं हिकिड़ो इंसान ई आहे जंहिंखे जंहिंजे अंदर एतिरी लालच पैदा थियल आहे, पर ॾिसो तव्हां हिन पूरी दुनिया में, हिन पूरी दुनिया जो निज़ाम पियो हले थो, जेके पखी आहिनि, जेके जानवर आहिनि, उहे सभु खाइनि था, उहे सभु पीअनि था, पर हिकिड़ो इंसान ई आहे जंहिंखे एतिरी टेंशन हूंदी आहे, एतिरियूं परेशानियूं हूंदियूं आहिनि, हालांकि हर हिकु चीज़ खे रिस्क जो खारण जो ज़िमो अलाह पाक खयो आहे। सो पंहिंजी ज़िंदगी में थोरो पाण खे रिलैक्स रखो, परेशानियुनि खां थोरो दूर रहो ऐं ख़ुशि रहण जी कोशिश कयो, बाक़ी एतिरो हिर्स पैदा न कयो पंहिंजे अंदर बाबा। ओके जी, सो हिकिड़ो गानो असांजी लिस्ट में आहे, तव्हां चवंदा मां मिंट में मतिलब मौलाना थी वेंदी आहियां, सुठी ॻाल्हि आहे, पर चलो हिकिड़ो गानो असांजी लिस्ट में आहे, सो असां हिकिड़ो गानो बि इंजॉय कंदासीं। हीउ वारो ट्रेक आहे, ॿुधी करे इंजॉय कयूं था। तव्हां सां गॾु मौजूद आहे बिल्कुल तव्हांजा खोड़ सारा, ओ हेॾा सारा मैसेज जमा थी विया आहिनि, मैसेज पढ़ूं था पर थोरो ई गानो इंजॉय करे वठूं, एतिरी बि तकड़ शाजी आहे।

0: ॾाढो भलो गानो जेको इंजॉय कयूं पिया असां वाकई भाग वारा आहियूं बिल्कुलु बबन ॻाल्हि में को शक कोन्हे को पर हिते मां जा मैसेजिस आहिनि असांखे ज्वाइन कयो आहे मक़सूद मल्हा मेहरापुर से कहते हेलो सिदरा मुस्कान आप हमें सुन रहे हैं जी लाहौर से वालेकुम अस्सलाम कहते हैं मैं शो सुन रहा हूँ और बहुत शुक्रिया जी आप मास्टर मंसूर का गाना सुनना चाहते हैं बिल्कुल आपको गाना सुनाया जाएगा आप हमारे साथ ही आपको वेलकम कहा जाता है अच्छा ये कहते हैं मुंह समझो मुझे मोबाइल जो स्पीकर फाटी पयो है पर मसलो तवा ना हो हाँ ये बिल्कुल तसली दियो असांगे
1: टोपी अजरक
0: अच्छा गोट मोहम्मद तैयब थे वो कहा हबीबुल्ला थे वो भाई कहते हैं केड़ो भी फास्ट सॉन्ग बुधराए जो हाजिर हाजिर अच्छा ये हमारे साथ हैं जी आसिम कहते हैं आपी पोएट्री तेरी जात से कोई शिकवा नहीं चाहने वालों को अक्सर दुख ही मिलते हैं वाह वाह वाह वाह वेरी नाइस और हमारे साथ हैं फहीम भाई कहते हैं दादा दोनों सॉन्ग समझ नहीं आए लेकिन हाँ वाइब अच्छी थी हम वाइब मैच करने वाले इंसान है वाइब जिते मिलंदी असा उते मिलंदासी महबूब अली मोरो सिटी से मैं सुन रही कहते वाले वालेकुम अस्सलाम प्यारी सिदरा कुंज कैसी हो अच्छा कहते हैं आपका शो वेरी वेरी गुड है नाइस है आप की सॉन्ग हमेशा अच्छे होते हैं और हमेशा खुश रहे नया कोई सॉन्ग सुनाए कारो वगो पर थैंक सो नाइस ऑफ यू कुंज ओके ओके आपको एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं कारो वगो पर What? और तवा यो मैसेज जो ना वही वराए तवा जो शेयर थी वही सो थैंक यू सो मच तवा से सगड़ मौजूद आयो मोरो का महबूब अली

पासे आखी के तां कारो जोड़ो भी कहीं कहीं ते ठहे बाबा डाडो व्यापी गानो जको एंजॉय कयूं पया अस से गेते मौजूद आए साजी दर्द दे दिल केतिया अस्सलाम वालेकुम चंदा जाने कैसी हो वेलकम वेलकम मेरे को पता ही नहीं लगा शो चल रहा है हां जी शो चल रहा है वैसे कहती वाह वाह वाह वाह थैंक यू और कहती सही कहा सब सबके पास सब कुछ नहीं होता जो नहीं मिलता उसको हंसकर छोड़ दो और जो मिलता है उस पर शुक्र करो

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेट पर। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरा पर माथिली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं चलती का नाम मस्ती। ओके जी, तो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और जिन लोगों ने अभी अभी प्रोग्राम सुना है स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ जो आज आप लोगों से सवाल पूछा गया था प्रोग्राम में वो उन लोगों को बताते हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी अभी हमें सुना है स्टार्ट किया, ताकि अगर वो हमें मैसेज करें तो आप टॉपिक को लाजमी फॉलो कर लें। तो आज के जो प्रोग्राम का टॉपिक था वो कुछ इस तरह था कि आपने मुझे बताना था, एक इंसान जब दूसरों की प्रॉब्लम्स का उससे बताया जाता है तो उसको जल्दी से उसका जो ना सोल्यूशन मिल जाता है, यानी कि वो मशवरा देने लग जाता है कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो इसके साथ ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन जब अपनी प्रॉब्लम आ जाती है, अपने पर आ जाती है, तब हम अपनी प्रॉब्लम जो है वो ऐसे चुटकियों में क्यों नहीं गायब कर पाते। ये थोड़ी सी एक ऐसी बात है जो कि हम सबको समझनी चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स में फंसे होते तो हम दूसरों से मशवरा लेते हैं और यकीनन ऐसा होता है कि हम उनके मशवरों पर कई मरतबा ऐसा भी जाता है कि हम अमल भी करने लग जाते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो कि भाई इग्नोर नहीं की जा सकती, इनको जरा नोटिस किया करें और उसके साथ साथ मुझे बताएं ऐसा क्यों होता है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे 8881 पर ज्वाइन करेंगे और साथ ही साथ जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं वो काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर करेंगे।

ओके जी, क्या ही ब्यूटीफुल गाना जो कि हमने एंजॉय किया, बहुत ही खूबसूरत। और इसी के साथ साथ एक और चीज जरा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। वैसे तो ऐसा वाला सीन है हर तरफ जो है ना, वो एक आज नई ऐप आ चुकी है, आजकल नई ऐप उसके चर्चे चल रहे हैं बहुत ज्यादा, जो कि लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि बिलीबिली नाम से एक ऐप है, जो कि लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि भाई अब यूट्यूब की छुट्टी हो जाएगी, अब बिलीबिली पर वीडियो डालें। ऐसा कोई सी नहीं कि 4000 आपको जो है ना वो वॉच टाइम पूरा करना पड़ेगा, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने पड़ेंगे तभी जाकर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। बस बिलीबिली पर आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल जाए तो आपको अर्निंग आना आपकी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह की कोई चीजें बताई जा रही है लोगों को थोड़ा सा जो है ना, वो लोग तो ऐसे होते हैं, जो भी उनको बता दो वो बस मान ही लेते हैं। तो मैं जरा इस चीज को क्लियर करना चाहती थी उन तमाम तो लोगों को जो कि हमारे साथ मौजूद होते हैं, हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। तो जरा आप लोगों को इस चीज के बारे में बता दी चलो कि ये जो बिलीबिली नाम की ऐप है ना, ये एक चाइनीज ऐप है, ठीक है। उनका ये मानना है, वैसे तो ये ऐप 2009 में बनी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके चर्चे आजकल क्यों इतने चल रहे हैं, हर जगह जहां भी देखें बस हर किसी की जबान में बिली बिली बिली बिली।

सकते हैं, इस चीज में कोई हर्ज नहीं है, इस चीज में कोई झूठ नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप चाइना में नहीं है, किसी और मुल्क से आपका ताल्लुक है, तब आप इस एप पर कितनी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, आपका कुछ भी नहीं होगा। तो बस आप ऐसा नहीं कोई सीन यूट्यूब को टक्कर देने वाली आज तक कोई ऐप खैर से बनी नहीं है। तो ये आज जो दावे चल रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तसल्ली रखें, सुकून से अपनी जिंदगी जिए, चाय का कप पीजिए और ये वाला गाना एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा गाना आपके लिए लगा लिया है। तो आइए मिलकर इस गाने को एंजॉय करते हैं।

बहुत ही खूबसूरत गाना जिसकी हमें फरमाइश हमारी प्यारी दर्द दिल ने कर दी थी। गाना डेडिकेट मुझे जा रहा है और उनका अलावा अलीजा भी असो प्रोग्राम बुधे पाई। अलीजा थैंक यू सो मच सोनी तवासगर मौजूद है और हमारे साथी हको मौजूद सदा मौजूद मोलाली सलामत बदीन खान डॉक्टर हसीना सुमरो हमारे साथ कहती है डॉक्टर साहिबा डॉक्टर मरियम के शायद तुम सलाम डिना है। चौथा गानों तुम डेडिकेट किया है पठान खान कोसो के नाले। चले टाइम बची हो या तुम गानों मिली हो तो बिल्कुल तुम्हारे गानों हलाइंदी। और ये हमारे साथी मकसूद मला कहते हैं सभी के कारा वगा पसंद होंदा है मुखे वरी अच्छा वगा पसंद होंदा है और कहते हैं गाना चलाना कंजूसी नहीं करना। ओके जी ओके। और ये हमारे साथ आंसर एक दूसरे की रोटी हजम करनी होती है बुआ जी असल बात बस यही है मशवरे ना दें तो खुद की रोटी हजम नहीं होती और दूसरों की रोटी हजम करने के लिए खुद को मशवरा लेना पड़ता है। अच्छा इसीलिए अपन खुद के लिए जल्दबाजी नहीं करते। क्या बात है जल्दबाजी करनी भी नहीं चाहिए अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। ऐसे झट से हर किसी को मशवरे मत दिया करें मुफ्त वाले मशवरे और साथ साथ जैसा अपने लिए सोचे वैसा ही बिल्कुल दूसरों के लिए भी सोचा करें। ओके जी मोहम्मद सुमान भाई हमारे साथ हैं और ये मौजूद हैं वालेकुम अस्सलाम सोनी नंदड़ी बहन सिद्रा साहिबा बदीन खान डॉक्टर कैप्टन मरियम हमारे साथ हैं और आपका जी मैसेज जो है ना ये थोड़ा सा मिसिंग पार्ट हो चुका है तो आपको वेलकम कहा जाता है। थैंक यू आप हमारे साथ हैं। मीरपुर खास से राशिद अहमद हमारे साथ हैं नारे जो अदी सिद्रा टॉपिक तवाजो जबरदस्त आई ए तवाजो शो भी नाइस आए। थैंक यू वेरी मच प्यारा भा तुम मैसेज एतरो ही मिलो एतरो या वरी मिसिंग पार्ट थी वो अल्लाह जाने तो। और ये हमारे साथ हैं अच्छा किसी ने गाना बोला है नाम नहीं लिखा अपना तो नाम लिखा करे। और ये हमारे साथ ही अली नवाज नूरपुर से कहते हैं तू परचण का इनकार कयो तो के परचण भी यार छो रऊफ मक्सी जो गानो आहे मां कोशिश कयां थी टाइम बची हो तो बिल्कुल तांजो गानो हलाए वठूं था। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ही अली नवाज नूरपुर से आप हमारे साथ ही। और ये अखलाक भाई कहते हैं न बाबा इतनी महंगाई ना जितनी मानन बचा चवाने महंगाई है तो कमाए ना किसने मना किया है। क्या बात है। और ये हमारे साथ ही वरियाम अली जतोई कहते हैं प्यारी महफिल में सलाम था कहूँ अम्हां के शो बुधूं था सफा वी आई पी आई। थैंक यू वेरी मच वरियाम। और ये फहीम भाई कहते दादा ऐसे लेक्चर घर वाले भी देते हैं अब आप भी देंगी बाबा कुछ ख्याल करें हम बेचारों का। जी जी बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ लेक्चर्स ना दूं लेकिन वो क्या है ना कि मेरे अंदर का मौलाना जरा जाग जाता है तो इसीलिए बस हो जाता है। और चाचा खालिद कहते हैं सैडी लास्ट लिंक जी बिल्कुल। और ये हमने प्यारा गाना लगा लिया है क्या ही गाना है ये सुनकर इतना अच्छा लगता है ना कि बस क्या ही बताएं। तो गाना एंजॉय करेंगे और कुछ आपके मैसेजेस इन जल्दी से मैं खत्म कर लूं क्योंकि हमारे जाने का वक्त भी बिल्कुल करीब आ चुका है।

जी चाचा वो गाना डेडिकेट भी मुझे ही जा रहा था। देखे दर्दे दिल कितनी अच्छी अच्छी गाने निकाल कर आती है, कहती है गानो तवां के डेडिकेट आ तवां ते फिट करे थो। और कहती है चाचा अन्ना नेड़ी भी गाल कोने का। वैसे कड़ी कड़ी ये थींदो आ मूड ते डिपेंड कंदो आए ता तवां के या ता नंडी नंडी गालन ते भी मुंह खराब करे वेंदा आ या वरी ये थींदो आ वडी वडी गालियो भी बर्दाश्त करे वेंदा आ। इंसान जी हिकड़ी या नेचर आहे तबीयत आहे तो या ता वडी वडी गालियो भी बर्दाश्त करे वेंदा या ता सफा नंडी नंडी चीजन ते नंडी नंडी गालन ते भी उन जो मूड खराब थींदो आहे मुंह बणाए वेही रहंदो आहे। सो बस बाबा ये जिंदगी आहे ऐं तव्हां खे इन चीजन खे फेस करणो पवंदो छो त जेके तव्हांजा प्यारा आहिनि उहे अगरि मुंहुं ठाहे वेही बि रहनि था छा कजे भला पर चइणो पवंदो।

अच्छा जी, बिल्कुल जी, ये है कि आप अच्छी अच्छी गाने सुनते हैं हमारे प्रोग्राम में. अखलाक भाई कहते हैं सिद्रा नहीं ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा इसको आप उल्टा कीजिए, समझ रहे हैं आप, खुद ही बस उल्टा कीजिए, आपको बात समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ.

0: इन खे थोड़ो वराए बुधंदासी।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: जा पाबंदी मडल तंजीम BLA बाबत छिरकाईंदड़ इन शाह बलोचिस्तान के घर वजीर ज़िया लांगो चयो आए तो बलोच दहशतगर्द रिवायत के खत्म करण की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तानी फितने वारा बारन के वर्गलाए आपघाती हमला करना चाहन था। उन्होंने बिन बार मकसद ला इस्तेमाल किया तंजीम से गड कम का इनकार करने दहशतगर्द सैफ खान के कत्ल किया। दहशतगर्द मकसद में कामयाब न थींदा। इस्लामाबाद के पिमसाने की शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश। अगूणे सेक्रेटरी शाहिद खान शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम हाउस में जमा कराई। रिपोर्ट में सिक्यो रेस्क्यू इमदादी कम दौरान पेश आयल मसलन जो भी जिक्र। गैर हाजिर अमले खिलाफ कार्रवाई भी सिफारिश थियल। पिम्स इलाज में सहूलत की खोड़ जो भी जिक्र किया। साने के जिम्मेवार खिलाफ तकड़ी कार्रवाई करने की भी सिफारिश कई वही। जरिए जो चवण है तो रिपोर्ट पब्लिक करने जो अख्तियार वजीर आजम के दिनों वो है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वार जो दौरो जदीद हथियार की ट्रायल जो मुशाहिद कई वो। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल के इदारे के मुख्तलिफ शोबन ऑपरेशन ए मकामी सतह से तैयार थन्दड़ जदीद हथियार बाबत ब्रीफिंग डिनी वही। फील्ड मार्शल मकामी तौर से तैयार कल जदीद हथियार की टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पाण भरो थियण ए मकामी पैदावार सलाहियत ए टेक्निक में जिद जो अज़म अर्जायो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के दौरों जाली कागजन से सफर कंदड़ खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। घरू वजीर इमीग्रेशन काउंटर से भी कम कार जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी चयो तो सिस्टम डाउन थियण की सूरत में मुतबादल इंतजाम होजन घुर्जे। इमीग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे। पीपुल्स पार्टी पिमसाने की जांच रिपोर्ट पब्लिक करण जो मुतालबो करे छो। पीपुल्स पार्टी सेनेटर पलव शाह खान चया तो पिमसाने जो शायदी मिटाने की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब रुपया मिलिया रकम किथे खर्च थी ऑडिट कराई वे पिमसाने के लिकान न डनो वो।
3: मतलब 5 साल की बुछी उसके साथ दूसरा प्यार किया।
4: इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा।
2: खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सोहेल आफरीदी की अरमपुर में ज़ियाती बाद कत्ल कल मासूम आयत नूर जे अहमद घर वालदेन से दुख ए हमदर्दी जो इजहार। सोहेल आफरीदी निंगरी आयत नूर जो जिक्र कंदे लुड़क लाड़े वेठो। आयत नूर के वालद के मुकम्मल इंसाफ दियण की खातरी भी कराई। सिंध में HIV के वधंदड़ केसेस के छाप जवाब लाए आजाद कमीशन जोड़ी वे। MKM के आमिर सिद्दीक ठहरा सिंध असेंबली में जमा कराए छो। कराची के वलिका अस्पताल में सामू आयल HIV केसेस भी जांच जो मुतालबो। लागापियल ऑफिसर के उहदे तां हटाने की घुर। कराची के वापारी मीर रज़ा केस की जांच कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करने जो हुक्म। केस से जुड़ियल समूरन पुलिस ऑफिसर डॉक्टर समेत समूरन मानन जे फर्ज पेश करण की हिदायत। कमीशन गुजरियल डीं थियल जांच जो लिखतनामो भी हुक्म जारी कर छो। अदालती कमीशन चया तो मीर रज़ा जो सब का पैरों लाश डिसंदड़ नर्सरी मुलाजिम के भी नोटिस जारी कयो वे। पुलिस मोबाइल के इंचार्ज एहलकार के भी पेश कयो वे। कोटड़ी की भरसा मीरवा किनाल में बुडी वेल चौथे बार जो लाश बेहथ। 36 कलाकन बाद बुडी वेल बारन वरन के मीर मोहम्मद जो लाश बेहथ कयो वो। बडी अग रक्षा हूं थियण सबब चार नींगर मीरवा किनाल में बुडी वया। 3 नींगरन जा लाश गुजरियल डी मिलिया हुआ। कराची की अदालत 8 साल की निगरी हबीबा के गटर में किरी फोत थे केस जो फैसलो बुधा छो। कराची वाटर बोर्ड के महीने अंदर निगरी के वालदेन के 1.5 करोड़ रुपया मुआवजो अदा करण जो हुक्म। 2021 में 8 साल की निगरी हबीबा आक्स बे के शेर मोहम्मद गोठ में खुलियल गटर में किरी फोत थी वही हुई। मटियारी भरसा पलीजानी में नाइच ए खोसा बिरादरी के बिंदरन में थियल जेड़े जो एक जख्मी फौत जेड़े दौरान जख्मी थियल मुबारक वलद हमजो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम डनो खोसा ए नाइच धुरन में मामूली गाल थियल जेड़े में पंज जणा जख्मी थिया हुआ कुनरी वेझो फसल के भेल त बिंदरन में जेड़ो कुहाड़ियों लठियों लगने सबब पंज जणा जख्मी गोठ लखनऊरिंद में फसल के भेल त रिंद ए भील बिरादरी के बिन धुरन में जेड़ो थियो कुहाड़ियों लठियों लगने सबब भील बिरादरी जा पंज जणा जख्मी थिया शहदादपुर खां भिटशाह ताईं सूफिन जे सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ़ प्यादल मार्च जारी मांझी फकीर जी क्यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफिन ऐं शहरनि जो वॾो अंग शरीक अॻवाणनि चयो त सिंध सूफिन ऐं वलियनि जी सरज़मीन आहे सिंध खे विरिहाइण वारी साज़िश केर बि क़बूल न कंदो नबीसर रोड में बि सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ क़ौम परस्त अॻवाणनि ऐं शहरनि जी रैली अॻवाणनि चयो त सिंध जी वहदत ते वार बर्दाश्त न कंदासीं सिंध हिकु आहे ऐं रहंदी
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
0: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज GAFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
6: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से फायदा पहुंचे जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
7: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज मुअस्सर बगैर दर्द और बगैर सुई के है मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
9: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
8: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
10: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
11: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
12: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रखंदा अच्छा निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम की खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी की सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलन।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा।
1: 03132525786।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आ त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो, डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
3: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो आहे असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
2: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बलोचिस्तान में पाबंदी मड़ियल तंजीम BLA जो दहशतगर्दी वारो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस आपघाती हमले लाइ तैयार कल नंढी उम्र के बिन छोकरन के गिरफ्तार करे वरतो। निंगरन जा पाबंदी मड़ियल तंजीम BLA बाबत छिरकाईंदड़ इंकशाफ। बलोचिस्तान के घरू वजीर ज़ियाल आंगो चयो आए त दहशतगर्द बलोच रवायतन के खत्म करण की कोशिश करे रहा है। दहशतगर्दन 16 साल की ज़ैनब ए 12 साल की फातिमा के वरगलायो। 40 डीह ताईं खेन बंद कर आपघाती हमले लाइ तैयार कर। नींगरन जा वालद भी हैरान आन। ज़ैनब के मुड़स के दहशतगर्दी मारे इल्ज़ाम फोर्सेज लगाया। फोर्सेज जो दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी है। दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो। इस्लामाबाद के पिम्स थाने की शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश। अगूणे सेक्रेटरी शाहिद खान शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम हाउस में जमा कराई। रिपोर्ट में रेस्क्यू इमदादी कमन दौरान पेश आयल मसलन जो भी जिक्र। गैर हाजिरी अमले खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश। पिम्स में इलाज ए सहूलतन की खोट जो भी जिक्र कयो वयो। थाने के जिम्मेवार खिलाफ तकड़ी कार्रवाई करण की भी सिफारिश कई वही। रिपोर्ट मिलने बाद वजीर आजम आम इजलास कुछ देर में सदाए वरतो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो। जदीद हथियार के ट्रायल जो मुशाहिदो कयो वयो। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इदारे के मुख्तलिफ शोबन ऑपरेशन ए मकामी सतह से तैयार थन्दड़ जदीद हथियार बाबत ब्रीफिंग डिनी वही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मकामी तौर से तैयार कल जदीद हथियार की टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पाण भरो थियण ए मकामी पैदावारी सलाहियत ए टेक्निक में जिदत जो अज़म वरजायो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची दौरो। जाली कागजन से सफर कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। घरू इमीग्रेशन काउंटर से भी कमकार जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी चयो तो सिस्टम डाउन थियण की सूरत में मुतबादल इंतजाम हुजण घुर्जे। इमीग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे। पीपल्स पार्टी पिम्साने की जांच रिपोर्ट पब्लिक करण जो मुतालबो कर छो। पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान है तो पिम्साने जो शायदी मिटाने की कोशिश थी रही है। पिम्स के 3 साल दौरान 22 अरब रुपया मिलिया है। रकम किथे खर्च थी ऑडिट कराई वे पिम्साने के लिखा न दिनों वेंदो। खैबर पख्तूनख्वा के
2: उसके साथ सिर्फ प्यार शेयर सकते
3: इंशाल्लाह इनको सुगंध देगी और आपको इंसाफ मिलेगा।
1: खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सुहेल आफरीदी की हरिपुर में ज़ियाती बाद कतल कल मासूम आयत नूर के घर आमद वालदे से दुख ए हमदर्दी जो इजहार। सुहेल आफरीदी नींगरी आयत नूर जो जिक्र कंदे लुड़क लाड़े वेठो। आयत नूर के वालद के मुकमल इंसाफ दियण की खातरी भी कराई। सिंध में एचआईवी बदंदड़ केस के शफाफ जांच लाए आजाद कमीशन जोड़े वे। MQM के आमिर सिद्दीकी 18 सिंध असेंबली में जमा कराए छो। कराची के वेलिका अस्पताल में सामू आयल एचआईवी केस की भी जांच जो मुतालबो। लागापियल आफिसर के भी उहदे तां हटाने की घुर। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करण जो हुकुम। केस से जुड़ियल समूरन पुलिस ऑफिसर ए डॉक्टर समेत समूरन मानों की फरस पेश करण की हिदायत। कमीशन गुजर डी थियल जांच जो लिखित जो हुक्मनामो जारी कर छो। अदालत कमीशन है तो मीर रजा जो सब का पैं लाश डिसंदड़ नर्सरी मुलाजिम के भी नोटिस जारी कयो वे। पुलिस मोबाइल के इंचार्ज एहलकार के भी पेश कयो वे। कोटड़ी की भरसा मीरवा केनाल में बुडी वेल चौथे बार जो लाश भी हथ 36 कलाक बाद बुडी वेल 12 वर के मीर मोहम्मद जो लाश हथ कयो वयो। बडी अग रक्षा उंदो थियण सबब 4 नींगर मीरवा केनाल में बुडी वया। 3 नींगर जा लाश गुजर डी मिलिया हुआ। मटियारी भरसा पलीजाणी में नाय चे खोसा बिरादरी के बिन धिरन में थियल जेड़े जो एक जख्मी फोत। जेड़े दौरान जख्मी थियल मुबारक वलद हमजो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम डई छो। खोसा ऐं नाइज धुरन में मामूली ॻाल्हि तां थियल झेड़े में पंज ॼणा ज़ख़्मी थिया। कुनरी वेझो फसल जे भेल तां ॿिनि धुरन में झेड़ो कुहाड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सबबि पंज ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ लखनऊ रिंद में फसल जे भेल तां भील बिरादरी ऐं रिंद बिरादरी जे धुरन में झेड़ो थी पियो। झेड़े दौरान लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण सबबि भील बिरादरी जा पंज ॼणा ज़ख़्मी थिया। शहदादपुर खां भिटशाह ताईं सूफ़ीनि जो सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ प्यादल मार्च। मांझी फ़क़ीर जी क़यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफ़ीनि ऐं शहरनि जो वॾो अंगु शरीक अॻवाननि चयो त सिंध सूफ़ीनि ऐं वलियनि जी सरज़मीन आहे। सिंध खे विरिहाइण वारी साज़िश केर बि क़बूल न कंदो। नबी सरोड में बि सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ कॉम्प्रेस अॻवाननि ऐं शहरनि जी रैली अॻवाननि चयो त सिंध जे वहदत ते वार बर्दाश्त न कंदासीं। सिंध हिकु आहे ऐं रहंदी। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालनि जे नर्सिंग ऐं पैरामेडिकल स्टाफ पारां अस्पतालनि खे पीपीए शाह हवाले करण ख़िलाफ़ रैली। मुज़ाहिरीन सिविल अस्पताल खां प्रेस क्लब हैदराबाद ताईं प्यादल मार्च करे एहतजाज कयो। मुज़ाहिरीन चयो त अस्पतालनि खे पीपीए शाह हवाले करण वारो फ़ैसिलो क़बूल न आहे, फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। फैज़गंज में बदमनीअ ख़िलाफ़ शहरनि जो मेराण हाईवे ते धरणो। अकरी थाणे जे हद में चोरनि जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ करूंडी डिग्री कॉलेज वटि टायर साड़े मेराण हाईवे ते धरणो हयो वियो। मुज़ाहिरीन चयो त घरनि मां थियल चोरी वापसि कराए तालुके में अमन अमान बहाल करायो वञे। घोटकीअ में ॿारनि जी ख़र्ची घुरण तां मुड़ुस पारां मुबैना तौर कार ऐं इल्ज़ाम हेठि नारीअ खे क़तलु करण जी कोशिश। नारी पीउ समेत अदालत पहुची वई। नारीअ जो चवणु आहे त मुड़ुस नज़ीर चाचड़ ख़र्च न ॾींदो हो। हक़ घुरण ते मार कुट करे घरां कढी छॾियो आहे। पटीशन दाख़िल करण तां मुड़ुस कार ऐं इल्ज़ाम हेठि क़तलु करणु चाहे थो।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
6: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
7: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलन

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03132525786।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशा जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो नथियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधीक मालूमात लाए 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBA अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। निज़ाम लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जेकर है तवा के मैदे की तकलीफ, सीने की जलन, खट्टी उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, तो हाँ परेशान थियण की जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे की खराबी हाजमे के मसलन लाए आजमूदा फायदेमंद कोरस है। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबह जो 9 का शाम जो 5 तई हमजा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली। राबते के लिए फोन करो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इस वजह से है कि भाई सब इसमें आकर बोले, ये इल्तवा के बाद जाहिर है जब बहस मुबासा होगा और फिर ये बात आगे चलेगी।
2: सो बहस असा इन करे चाहूं था त हर सिंध जो माण्हू जेको आहे हिन मामले ते ॻाल्हाईंदो। अहम मामिलो आहे, असां चाहियूं था त सिंध जा माण्हू ॿुधनि ऐं हुनजे असां टेक्निकली तौर ते
3: असांजी मंडे खां वठी वरी इन ते रेज़ोल्यूशन बि पास कंदासीं।
4: पीपल्स पार्टीअ पारां सिंध जे इम्कानी विरांगे बाबति सिंध असेंबलीअ में बहस लाइ पेश कयल रिथ जो दिफ़ा, ऐवान मां विरांगे ख़िलाफ़ ठहराउ बि मंज़ूर कराइण जो ऐलान। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो आहे त सिंध असेंबली पहिरीं बि 6 भेरा ठहराउ पास करे चुकी आहे, रिथ आणण जो मक़सदु बि मामले ते ॻाल्हाइण आहे। मोहम्मद अली मलकाणी चयो त नवनि सूबनि ते बहस जो मक़सदु मौक़िफ़ पेश करणु आहे। सिंध जे इम्कानी विरांगे ख़िलाफ़ ठहराउ बि पास कयो वेंदो।

0: पेम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत समूरन डिपार्टमेंट्स के सरबराहन के ओहदन ता हटायो वञे। पेम्स थाने की जांच कंदड़ कमेटी सिफारिशू वजीर आजम हवाले करे छड्यू। पेम्स थाने की शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश। रिपोर्ट में रेस्क्यू ए इमदादी कमन दौरान पेश आयल मसलन जो भी जिक्र। पेम्स में इलाज ए सहूलतन की खोट जो भी जिक्र कयो वयो। थाने की जिम्मेवार खिलाफ तकड़ी कार्रवाई करण की भी सिफारिश कई वही। जरियन मूजिब बिन्हीं ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ए नर्सरी के जिम्मेवार डॉक्टर्स ए नर्सिस के भी हटाने की तजवीज दिनी वही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर के चार्ज छड़न की हिदायत। वजीर आजम लाहौर में अहम इजलास लाए वरतो।
1: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा। सारा रिपोर्ट
2: सर, आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे इस पर?
1: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ।
2: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतलात है, आपने रिजाइन को कर दिया।
1: रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
0: रिपोर्ट इंदी तो सभी के एक्शन की भी खबर पैजी वी। मुझी इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पुछो वे। सेहत वार वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल जो साथी वजीर तारिक फजल चौधरी से गड पिम्स अस्पताल जो दौरो। तारिक फजल चौधरी चयो तो पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट अज सामू अची वेंदी।

पीपुल्स पार्टी पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट पदरी करने मुतालबो कर छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पीपुल्स पार्टी के सेनेटर पलवेशा खान तो सभी गठजोड़ है शफाफ जांच कि लगे तो नंडन ऑफिसर मथा मलबो किरा वो वन ऑफिसर के कुछ नाने जो शायदियों मिटायण की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब मिलिया पैसा किथे लगा कि खर्च थे ऑडिट कराई वे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामियों को इतराफ़ मुल्की निज़ाम के बेबिटे मयार वारो करार दे छो। तकरीब के खिताब कंदे मुसद्दिक मलिक चयो तो कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज करण नथा वन न ही कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूलन में पढ़न था। इन फर्क के खात्मे तई निज़ाम ठीक न थींदो।

0: मुल्की मैशियत मुस्तहकम थी चुकी आहे, महांगाई बिटी सैकड़ो मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तेहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यान तरक़ीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो चवण हो त व्याज जी शरह बि 22% मां घटि थी 11% थी वई आहे। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाध थी आहे। खिते में बि पाकिस्तान अहम किरदार हासिल करे चुको आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो, जदीद हथियारनि जे ट्रायल्स जो मुशाहिदो कयो वियो। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल खे इदारे जी मुख़्तलिफ़ शोबनि, ऑपरेशन्स ऐं मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी। फील्ड मार्शल मक़ामी तौर ते तयार कयल जदीद हथियारनि जी टेस्ट ट्रायल जो बि मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मक़ामी पैदावारी सलाहियतुनि ऐं टेक्निक में जिदत जो अज़म वरजायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मरियल तंज़ीम BLA जो दहशतगर्दीअ वारो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सिस आपघाती हमले लाइ तयार कयल नंढे उमिरि जी ॿिनि छोकिरियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। निंगरनि जा पाबंदी मरियल तंज़ीम BLA बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर ज़िया लांगो चयो आहे त दहशतगर्द बलोच रवायतुनि खे ख़तम करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दनि 16 सालनि जी ज़ैनब ऐं 12 वरनि जी फातिमा खे वरगलायो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा ज़िला निज़ामानी मेडिकल सेंटर अवाम की खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी और फार्मेसी की सहूलत मौजूद आहे। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
10: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा।
10: 03125252786।
5: जी हा, 2315525786।
10: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदे ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंकी।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

बस दर्द ही मिले तो ना प्यार ना होए दे हाँ रोनो तो दुआ है इजहार ना होए।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अक्सर मानो जो सवाल हों तो असान के सही पोलियो जी वैक्सीन 10 सालन ताई छोती दिनी वने तो जको असान वट जेके बार आन अक्सर कमजोर आन उन में इम्यूनिटी तमाम घट हुंदी आ, हाई रिस्क हुंदा आन। उने के अलावा असान जी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंजे करे तहां के वैक्सीन जे लाए उम्र जी हद कोने कैम जगत वैक्सीन कैम उम्र जे पोलियो लगी सके तो कैम उम्र जे वैक्सीन करे सके पर रेशियो वजी क 10 साल के घट आ तंजे करे असान जो रुकेश आए सब जी के बूस्टर डोज लगराए।
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पीपल्स पार्टी पारा सिंध के इम्कानी विरांगे बाबत सिंध असेंबली में बहस लाए पेश कल रिथ जो दिफा ऐवान में विरांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराने जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह है सिंध असेंबली पहरी भी 6 भेरा ठहराव पास कर चुकी है। रिथ आणन जो मकसद भी मामले से गलण है। मोहम्मद अली मलकानी चो तो नवन सूबन से बहस जो मकसद मौकिफ पेश करण है। सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ ठहराव भी पास किया वो। पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत समूरन डिपार्टमेंट्स के सरबराहन के ओहदन ता हटाया वे। पिम्स थाने की जांच कंदड़ कमेटी सिफारिशों वजीर आजम हवाले कर छो। पिम्स थाने की शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश। रिपोर्ट में रेस्क्यू ए इमदादी कम दौरान पेश आयल मसलन जो भी जिक्र। पिम्स में इलाज ए सहूलतों की खोट जो भी जिक्र किया वो। थाने की जिम्मेवार खिलाफ तकड़ी कार्रवाई करने की भी सिफारिश कई वही। जरियन मूजिब बिन्हीं ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ए नर्सरी के जिम्मेवार डॉक्टर्स ए नर्सिस के भी हटाने की तजवीज दिनी वही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर के चार छड़न की हिदायत कर छी। वजीर आजम लाहौर में अहम इजलास लाए वरतो।
2: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा सारे रिपोर्ट
3: सर, इंतजार। आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे इस पर?
2: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ है।
3: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतलात है, आपने रिजाइन को कर
2: दिया? रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
1: रिपोर्ट इंदी तो सभी के एक्शन की भी खबर पैजी वी। मुझी इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पूछो वे। सेहत व रिफाकी वजीर मुस्तफा कमाल साथी वजीर तारिक फजल चौधरी से गड पिम्स अस्पताल जो दौरो कयो। तारिक फजल चौधरी चो तो पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट अज सामू अची वी। पीपल्स पार्टी पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट पधरी करने जो मुतालबो कर छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलव शाह खान चो तो सभी जो गठजोड़ है। शफाफ जांच किनी थींदी लगे तो नंडन ऑफिसरन मथा मलबो किरायो वेंदो, वडन ऑफिसरन के कुछ न थींदो। थाने जो शायदियों मटायण की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब रुपया मिलिया आहिन। पैसा किथे लगा, किन खर्च थिया, ऑडिट कराई वे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामिन जो एतराफ। मुल्की निजाम के भी बिटे मयार वारो करार दे छो। तकरीब के खिताब कंदे मुसद्दिक मलिक चयो तो कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज कराने नथा वन, नई कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूलन में पढ़न था। इन फर्क के खात्मे ताई निजाम ठीक न थी दो।

0: मुल्की मैशियत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई 30% मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तेहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यानु तरक़ीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो चवण हो त व्याज जी शरह 22% मां घटि थी 11% थी वई आहे। आम माण्हूअ जी आमदनी में बि वाध थी आहे। खिते में बि पाकिस्तान अहम किरदार हासिल करे चुको आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट जो दौरो, जदीद हथियारनि जे ट्रायल्स जो मुशाहिदो कयो वियो। ISPR मौजे फील्ड मार्शल खे इदारे जे मुख़्तलिफ़ शोबनि, ऑपरेशनल ऐं मक़ामी सतह ते थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग डि॒नी वई। फील्ड मार्शल मक़ामी तौर ते तयार कयल जदीद हथियारनि जी टेस्ट ट्रायल जो बि मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मक़ामी पैदावारी सलाहियतुनि ऐं टेक्निक में जिदत जो अज़म वरचायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मड़ियल तंज़ीम BLA जो दहशतगर्दीअ वारो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज आपघाती हमले लाइ तयार कयल नंढे उमिरि जी ॿिनि छोकिरियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। निंगरनि जा पाबंदी मड़ियल तंज़ीम BLA बाबति छिरकाईंदड़ इंकिशाफ़। बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर ज़िया लांगो चयो त दहशतगर्द बलोच रवायतुनि खे ख़तम करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दनि 16 वरनि जी ज़ैनब ऐं 12 वरनि जी फातिमा खे वरगलायो। 40 ॾींहनि ताईं खेनि बंदि रखी आपघाती हमले लाइ तयारु कयो वियो। निंगरनि जा वालदीन बि हैरान आहिनि। ज़ैनब जे मुड़ुस खे दहशतगर्दनि मारे इल्ज़ाम फोर्सिस ते लॻायो। फोर्सिस जूं दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि। दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मुहसन नक़वी जो जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो दौरो, जाली कागज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी हिदायत। घरू वज़ीर इमिग्रेशन काउंटर्स ते बि कमकार जो जाइज़ो वरितो। मुहसन नक़वी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादल इंतज़ाम हुजण घुर्जे। इमिग्रेशन जो अमल बंदि न थियणु घुर्जे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुल आसान आहे। ये असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻरायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली। छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राबितो कंदा।
1: 03125252786।
2: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सो बहस अस इन चाहूं था तो हर सिंध जो मानो जो इन मामले से गाल अहम मामलो है अस चाहूं था सिंध जहा मानो बुधन उनके अस टेक्निकली तौर से अस मंडे को वी वरी इन रेजोल्यूशन भी पास कंदे।
2: पीपल्स पार्टी पारा नवन सूबन ए यूनिटन ते बहस लाए सिंध असेंबली में पेश कल रिथ जो दिफा ऐवान मां विरहांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराने जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर शाचियो है तो सिंध असेंबली पहरी भी छह भेरा ठहराव पास कर चुकी है। रिथ आनण जो मकसद भी मामले से गालण है। मोहम्मद अली मलकानी चो तो नवन सूबन से बहस जो मकसद मौकिफ पेश करना है। सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ ठहराव भी पास किया वेंदो।

0: पिम्स जे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत समूरनि डिपार्टमेंट्स जे सरबराहनि खे उहिदनि तां हटायो वञे। पिम्स थाने जी जांच कंदड़ कमेटी सिफारिशूं वज़ीर आज़म हवाले करे छॾियूं। पिम्स थाने जी शुरूआती जांच रिपोर्ट वज़ीर आज़म खे पेश। रिपोर्ट में रेस्क्यू ऐं इमदादी कमनि दौरान पेश आयल मसइलनि जो बि ज़िक्र। पिम्स में इलाज ऐं सहूलियतुनि जी खोट जो बि ज़िक्र कयो वियो। थाने जे ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ तकिड़ी कार्रवाई करण जी बि सिफ़ारिश। ॿिन्ही ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऐं नर्सिस जे ज़िमेवार डायरेक्टर्स ऐं नर्सिस खे बि हटाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई। एडी पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर खे चार्ज छॾण जी हिदायत। वज़ीर आज़म सदारत हेठि पिम्स रिपोर्ट ते इजलास अहम फ़ैसिला कया विया।
1: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा। सारे रिपोर्ट
2: सर, आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे इसको?
1: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ।
2: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतला है, आपने रिजाइन बुक कर दिया।
1: रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
0: रिपोर्ट ईंदी तो सभी के एक्शन की भी खबर पेजी वेंदी। मुझे इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पूछो वे। सिहत वारे फाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल तारिक़ फज़ल चौधरी सां गॾु पिम्स अस्पताल जो दौरो कयो। तारिक़ फज़ल चौधरी चयो त पिम्स थाने जी जांच रिपोर्ट अॼु साम्हूं ईंदी।

पीपुल्स पार्टी पिम साने जी जांच रिपोर्ट पधरी करण जो मुतालबो करे छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पीपुल्स पार्टी के सेनेटर पलविशाह खान चयो तो सभी गठजोड़ है शफाफ जांच कि थी लगे तो नंढन ऑफिसर मथा मलबो किरा वो वडन ऑफिसर के कुछ नाने जो शायदी मिटायण की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब मिलिया पैसा किथे लगा किन खर्च थे ऑडिट कराई वे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामियों को एतराफ मुल्की निजाम के भी बिटे मयार वारो करार दे छो। तकरीब के खिताब कंदे मुसद्दिक मलिक तो कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज करण नथा वन न ही कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूल में पढ़न था इन फर्क के खात्मे तई निजाम ठीक न थी। मुल्की मैशियत मुस्तहकम थी चुकी है महंगाई भी 30 सैकड़ों में घट जी सिंगल डिजिट से पहुंची है। मुआशी इस्तहकाम बाद हुकूमत जो हाने ध्यान तरक्की से आए लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिताब कंदे नायब वजीर आजम चयो तो विहार की शराब 22 सैकड़ों में घट थी 11 सैकड़ों थी वही आम मानू की आमदनी में भी वाध थी है खिते में भी पाकिस्तान अहम किरदार अदा हासिल कर चुको है।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो जदीद हथियारनि जे ट्रायल्स जो मुशाहिदो कयो वियो। एसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल खे इदारे जे मुख़्तलिफ़ शोबनि ऑपरेशन ऐं मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। फील्ड मार्शल मक़ामी तौर ते तयार कयल जदीद हथियारनि जे टेस्ट ट्रायल जो बि मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मक़ामी पैदावारी सलाहियतुनि ऐं टेक्निक में जिदत जो बि अज़म वरचायो।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435।

0: एड्रेस टंडो गुलामली रोड मातली।
1: खुशखबरी अवांजे पंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अजा मुस्तफा सीएमएच हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं बार जो न थियण बांझपन
2: डॉक्टर अजा मुस्तफा एमबीबीएस रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीजन जो इलाज कंदी याद रखे निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो निजामानी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
0: जी हा, 331-25-25-786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: जेकर तवां बवासीर जे तकलीफ, रत अचण, सख्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ जड़न मसलन में मुब्तला आयो ऑपरेशन खां टुजो था त हाणे परेशान छण जी जरूरत न आए। इस्तेमाल करियो निजाते बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाए आज़मूदा कोरस। निजाते बवासीर कोरस मिलण जो हंध हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां शाम जो 5 वगे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879-0312-01-287। सुकून, एतमाद, सेहतमंद जिंदगी ॾांहुं कदम।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: डेटा है तो अचे पियो वञे जो असां समझी पिया वठूं यार वाकई ही को इंस्टीट्यूशन जो ही माण्हू आहे. हाणे असां हिन ते अचूं अगरि फिशिंग ते या कीअं पई थिए फिशिंग.
1: सर फिशिंग इहो आहे की अवां जी डेटा कंप्रोमाइज़ थी वई कहिड़े बि जीअं तव्हां ऑनलाइन अक्सर माण्हू ग़लतियूं था करनि के सोशल मीडिया यूज़ करे हुन में को जीअं एड्स थियूं अचनि की साईं असां ऑनलाइन गेम्स था खेॾूं अवां बि ऑनलाइन गेम डाउनलोड कयो हू ऑनलाइन गेम जे नाले सां अवां जो डेटा तव्हां कलेक्ट था कनि तव्हांजो एनआईसी अची वियो तव्हांजी एनआईसी जो डेटा अची वियो तव्हांजी सॼी हुननि वटि डेटा अची थी वञे त डेटा कंप्रोमाइज़ थी वञे त डेटा जेॾी महिल तव्हांजी कंप्रोमाइज़ थी वञे त मां अवां खे उहे ई तव्हांजी कंटेंशियल सां रिकॉल त करायां की साईं तव्हांजा हिकु कंटेंशियल दिन अवां जो पार्सल आयो आहे मां अवां जे घर जे ॿाहिरां बीठो आहे हाणे जॾहिं अगरि मां तव्हांजो पार्सल खणी आयो आहे चाहे उहो TCS आहे चाहे उहो लिपर्ड आहे अगरि मां तव्हांखे रिसीव नथो करायां त हुन में हिकिड़ो ऑप्शन आहे रिटर्न करण हो अवां खे फोन करे चवनि था तव्हां पासवर्ड ॿुधायो त हे असांजी सोसाइटी में हिन महिल वॾो अहम ऐं ॿी ॻाल्हि माण्हू खे बैंकर थी करे कॉल था करनि.
0: जी हा सर बैंकर थी करे एज वेल एज जीअं तव्हां ॻाल्हि कई की का बि कोरियर सर्विस जे थ्रू जेके आहे त रिप्रेजेंटेटिव पंहिंजो ॿुधाए करे असांखे कॉल कनि था. ऐं फिशिंग में सर हीअ जेकी ऑनलाइन अगरि असां सोशल मीडिया जा कुझु प्लेटफॉर्म्स यूज़ कयूं पिया जस्ट लाइक फेसबुक पोइ उते कुझु ऑनलाइन शॉपिंग वारा जेके आहिनि वेबसाइट्स अची वेंदियूं आहिनि जेके फेक हूंदियूं आहिनि जेके तक़रीबन 80-90% डिस्काउंट ॾेई रहिया हूंदा आहिनि जस्ट ईंदा आहिनि 10% तव्हां पे कयो ऐं प्री जेका आहे न पेमेंट हूंदी आहे. छा इहा बि फिशिंग में पई अचे.
1: इहा बि फिशिंग में थी अचे. अगरि ॾिठो वञे त स्पूफिंग बि हिकिड़ी हिन जी टर्मिनोलॉजी आहे की मां हिकिड़ी फेक आहे वेबसाइट ठाहे करे स्पूफिंग कयां थो उन जी बि सज़ा 3 साल आहे. उन में मां यकीन थो ॾियारियां की अगले खे बिलीव कराइणो आहे जे मां अवां खे बिलीव करायां की मां वटि हिकिड़ी अहिड़ी स्कीम आहे जंहिंमें हेतिरा पैसा तव्हांजा डबल था थियनि तव्हां वरी उनखे ऑनलाइन खे फॉलो कयो था वरी छा आहे असां हिकिड़ी कंटेंट्स ठाहियूं था. अॼु जो जेको डिजिटल दौर आहे उन में अवां ॾिसो की जीअं असांजी AI
0: आहे
1: तव्हां मां हिते वेठा आहियूं असां हाणे अगरि AI जो नेगेटिव यूज़ कयूं असां बैकग्राउंड चेंज करे लिखूं असांखे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जे हेठां असांजो इहो इंटरव्यू कंडक्ट हो करे छॾंदा त माण्हू नेगेटिव शयूं यूज़ करे उनखे यूज़ करे माण्हुनि जा डेटा कलेक्ट करे माण्हुनि खे ईज़ी टारगेट करनि था जेके असां चऊं था साइबर क्राइम.
0: ओके
1: डिजिटल क्राइम
0: सर ही नाउ डेज तव्हां ॾिसो पिया त इलाही असांजे कलीग्स जा बि जेके आहिनि व्हाट्सएप अकाउंट्स हैक थिया आहिनि ऐं उन्हनि खां पोइ डिफरेंट तरीक़े सां उन्हनि जे व्हाट्सएप जे अकाउंट ताईं मैसेज अचनि पिया त पेमेंट जी ज़रूरत आहे असांखे पेमेंट मोकिलियो ऐं इलाही ॼणनि पेमेंट मोकिले बि छॾी आहे. इहा स्पूफिंग कीअं पई थिए.
1: सर असल में पहिरीं ॻाल्हि त असांखे पाण खे पाण सेव करण जे लाइ डिजिटलाइज पाकिस्तान में असांखे डबल ऑथेंटिकेशन करणु खपे पंहिंजे असांजो जेको व्हाट्सएप आहे उन में हिकिड़ो ऑप्शन आहे ऑथेंटिकेशन डबल उहो अकाउंट लेस जेको ॿियो हूंदो आहे सिंपल व्हाट्सएप उहो कंप्रोमाइज़ थींदो आहे ऐं इहो तॾहिं थींदो आहे जेॾी महिल अवां इंटेंशनली ॼाणे वाणे न मगर कंहिं ग़लतीअ सां कंहिंखे तव्हां OTP ॾेई छॾियो जेको माण्हू तव्हां ॾे मोकिले थो उन OTP जो इहो हूंदो आहे जेके फ्रॉड्स करनि था माण्हू हो तव्हांजे नंबर ते हिकिड़ो नंबर था मोकिलनि OTP जे लाइ. OTP मीन्स वंस टाइम
0: पासवर्ड
1: उहो बसि हिकु दफ़ो यूज़ थी थो सघे उन खां पोइ यूज़ नथो थी सघे. जॾहिं उहो तव्हां OTP पंहिंजो अॻिले खे ॾेई था छॾियो उहो तव्हांजी एक्सेस था करनि तव्हांजे व्हाट्सएप ते. तव्हांजो व्हाट्सएप छोड़ो तव्हां यूज़ कंदा सभिनि ज़माने खे ख़बर हूंदो साईं बाबर साहब जो नंबर आहे. मूंखे अगरि राति अहिड़ो मैसेज अचे बाबर साहब अॼु मूंसां मिलियो आहे राति चए थो की यार मां हॉस्पिटल आहे
0: एमरजेंसी में आहियां
1: मां बिल्कुलु अव्हांजी मदद कंदुमि मां बिना सोचे करे कंदुमि त उन करे इहो तव्हांजो जेको कॉम्प्रोमाइज़ थो थिए व्हाट्सएप ऐं उन सां छा आहे हुननि तव्हांजे सभिनि कॉन्टेक्ट्स खे मैसेजिस था कनि की मां एमरजेंसी में आहियां मां हिते आहियां मां हुते आहियां. हाणे SSP लेवल जे माण्हुनि जो अगरि जा जेके डॉक्टर जेके इन्हनि जा बि थिया त बेसिकली NCCI हिकिड़ो नओं इदारो आहे पहिरियों FIA हूंदो साइबर क्राइम विंग हूंदी FIA में उनखे एबोलिश करे उनखे सॼो कन्वर्ट कयो वियो NCCI में
0: ऐं
1: जेके बि केस साइबर जा हलनि पिया FIA में उहे सॼा ट्रांसफर थी विया NCCI में. त हाणे NCCI हिकिड़ो इदारो आहे अगरि अहिड़ी शइ थिए थी ऑनलाइन पोर्टल आहे देन एंड देर तव्हां कंप्लेन कयो ऐं ईअं तव्हांजी बैंक्स जो बि इशू इहो ई थो थिए की तव्हांखे वंस टाइम पासवर्ड OTP मोकिलनि था उहो कंप्रोमाइज़ थो थिए माण्हुनि जा रिसेंटली माण्हुनि जे लखे रुपया अकाउंट मां अव्हांखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ॿुधायां जिते असां डिजिटल पाकिस्तान जी ॻाल्हि था कयूं हे जेके रोडनि रस्तनि ते सिमियूं था माण्हू विकिणनि सिमियूं बंदि करायो हो तव्हांजी ऑथेंटिकेशन बाए बायोमेट्रिक था वठनि तव्हांजी सॼी ऑथेंटिकेशन तव्हांजे हिकिड़े आङूठे जे निशान ते तव्हांजो सॼो डेटा आहे तव्हांजो शनाख्ती कार्ड हुन ते आहे तव्हांजो ऑनलाइन अकाउंट हुन ते आहे तव्हांजी हर शइ हुन ते जॾहिं हो असां रोड रस्तनि ते अगरि इन्हनि सिमनि वारनि खां सिम था पर्चेस कयूं पर हुन वटि तव्हांजो डेटा हली वियो हो तो डिजिटल क्राइम करे थो सघे त इन करे मां वरी सभिनि माण्हुनि खे इहो चवंदुमि की तव्हांखे अगरि सिम जी ज़रूरत आहे त तव्हां कोशिशि कयो की फ्रेंचाइज़र वटि वञो
0: फ्रेंचाइज़र सर बिल्कुलु तव्हां इहा सुठी ॻाल्हि कई पर छा आहे त फ्रेंचाइज़र हाणे क्लोज थी थींदियूं आहिनि हीअ जेके आहिनि रोड ते इन्हनि जूं एक्टिविटीज़ आहिनि हिन ते इहो असां माण्हुनि खे सजेस्ट तव्हां कयो त बहितर आहे त अगरि काई बि इंफॉर्मेशन हू ॾियनि था पिया त हुन जी जेके आहे त सही तरीक़े सां केयर करनि केयरफुल रहनि ईअं आहे सर छाकाणि त अगरि बायोमेट्रिक वठनि था पिया पोइ अक्सर इहो बि बहानो कयो वेंदो आहे त सिस्टम बिज़ी आहे ऐं जॾहिं हू हलिया था वञनि ऐं उहा सिम एक्टिव पई थी वञे बाए चांस पोइ उन जो मिस यूज़ थी पियो सघे ईअं न सर
1: सर इहो कराची में
0: जी जी
1: मीन वाइल इन्हीं हिकड़े माण्हू जो कयनि की हुन जो बायोमेट्रिक वरितनि हुन खे चयनि की तव्हांजो न आयो
0: आहे
1: तव्हां बायोमेट्रिक हिते न ॿिए खे हंधि मीन वाइल हुन जे पोएं हुनजी हिकिड़ी ॿी सिम कढियनि ऐं हुन सिम जॾहिं मां तव्हांजी हिकिड़ी सिम ॿी कढंदमि न
0: ऑटोमेटिकली
1: जेकी तव्हांजी सिम तव्हांजी मोबाइल में हले थी उहा बंदि थी वेंदी तव्हांजी सिम मोड़े अची वई ऐं उन सिम ते तव्हांजी सिम ते बैंक एक्टिव आहे मां बैंक खे लिखंदमि मुंहिंजो पासवर्ड गुम थी वियो आहे ऑफिशियल नंबर आहे ॻाल्हाईंदमि न उन ई नंबर सां कंदमि बैंक जो मूंखे एक्सेस मिली थो वञे इन खे चइबो आहे डेटा ब्रीच
0: ओके
1: बेसिकली बैंक जे लाइ असां डेटा रखियो आहे त NIC आहे नादरा जो आहे देन आफ्टर नादरा देर इज अनदर वेरीफिकेशन ते असां हुन जी शनाख्ती कार्ड जी वेरीफिकेशन करे पोइ हुन जो सिम ॾिसूं सिम खां पोइ असां हुन जो थम इम्प्रेशन था ॾिसूं हे जॾहिं सॼियूं ब्रीचिस थियनि थियूं तॾहिं हू सक्सेसफुली
0: करे था वठनि अच्छा सर हैकिंग ते तव्हां शुरू में ॿुधायो जीअं इंफॉर्मेशन आहे लेट सपोज कुझु फिशिंग जेके कनि था पिया पोइ कॉल कंदा आहिनि इवन हुननि खे हर शइ ख़बर हूंदी आहे नालो ॿुधाईंदा आहिनि एड्रेस ॿुधाईंदा आहिनि इन इहा इंफॉर्मेशन कीअं थी पुॼे किथां पिया खणनि इहे किथे असांजी ग़लतियूं आहिनि जिते असांजो डेटा हुते करे पिया छॾियूं इनपुट कयूं पिया ऐं उतां उहे इंफॉर्मेशन इज़ीली खणी उहा फिशिंग कनि था पिया
1: सर असल में असां वटि हिकिड़ो ॾिसो गुरबत जो हिकिड़ो सॼे पाकिस्तान में कंहिंखो लिकियल न आहे सॼे पाकिस्तान में असां लाइ इशू आहे असांजा जेके कॉल सेंटर्स आहिनि असांजो सॼो डेटा हुननि वटि आहे उहो छा आहे उन कॉल सेंटर्स खे आहे असांजा बैंक लिंक्ड इन बैंकिनि जा सॼा जीअं तव्हां हिन महिल SBL खे फोन करे पंहिंजे ATM जी चोरी जी ॻाल्हि था कयो त हिन महिल SBL जी का बैंक खुलियल न आहे हेड ऑफिस में कुझु माण्हू वेठा हूंदा आहिनि मगर हे यूज़ कंदा आहिनि कॉल सेंटर्स खे त कॉल सेंटर्स में जेके माण्हू वेठा आहिनि उन्हनि खे एक्सेस मिलियल आहे की तव्हांजो शनाख्ती कार्ड ॾिसी करे तव्हांखे तव्हां बैंक अकाउंट ॿुधाए था सघनि तव्हांखे बैलेंस था ॿुधाए सघनि त उहे माण्हू नालो बि आहे ईज़ी टारगेट थींदा आहिनि उन्हनि माण्हुनि जी पंहिंजी का मीन वाइल का ग़लती आहे या कुझु बि आहे जॾहिं हो कंप्रोमाइज़ कंदा आहिनि त तव्हांजो मुंहिंजो हिकु प्रिशियस डेटा कंप्रोमाइज़ थो थिए इन करे असांजो सॼो डेटा इन्हनि नंढी नंढी ॻाल्हियुनि जे करे लीक थो थिए जेके असां
0: जी
1: असांजो ईज़ी टारगेट इहो ई
0: आहे ऐं सर तव्हां ॾिठो हूंदो मूं ॾिठा आहिनि कुझु व्हाट्सएप ते कुझु अहिड़ियूं लिंक्स ईंदियूं आहिनि इवन ऑफर्स ईंदियूं आहिनि त तव्हां हिन लिंक ते अची करे हीउ फॉर्म फिल कयो था त फौरी तौर ते तव्हांजे अकाउंट में 2000 रुपया या 2500 रुपया अची वेंदा पोइ उहे जॾहिं माण्हू फॉर्म फिल था करनि त उहा लिंक जेकी आहे पंहिंजो पाण डाउन पई थी वञे
1: उहो हिकिड़ो वे आहे तव्हां खां तव्हांजी डेटा
0: डेटा वठण जो एक्ज़ेक्टली
1: मेन शइ आहे बाबर साहब हिन दौर में छोड़ो तव्हांजी डेटा असांखे सिक्योर करणी आहे ऐं उन ई डेटा जे मथां कमु करणो आहे हेसि ताईं तव्हां ॾिसो पहिरियों फेसबुक में इलाही शयूं मां ॿिए टाइम ते नथा वञूं असां फेसबुक ते था ॻाल्हायूं फेसबुक में इहो कॉमन हूंदो बिना के ईमेल आईडी जे करे फेसबुक जी आईडी ठही
0: वेंदी हुई हाणे थोरो प्राइवेसी लॻी वई
1: आहे मोबाइल कोड थो अचे ॿार वटि त मोबाइल ॾिसो ॿार वटि मुंहिंजो मोबाइल थी सघे थो ॿार जी पंहिंजी मोबाइल जी आइडेंटिटी त न आहे जेकी हुन वटि सिम हूंदी हुन ते मैसेज ईंदो वेरीफिकेशन जो मैसेज थो अचे की उहो ई माण्हू आहे त आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान में डिजिटलाइज़ेशन जी तरफ़ो ऐं सिक्योरिटी जी तरफ़ असां वञूं था मगर अञा बि असांखे ज़रूरत आहे पाण खे आवाम में जेसि ताईं सेल्फ अवेयरनेस न ईंदी
0: तेसि
1: ताईं इहे शयूं कंप्रोमाइज़ थींदियूं
0: बिल्कुलु सर तव्हां सही पिया थियो सोशल मीडिया जी ॻाल्हि अची वई अगरि त टॉपिक असांजो थोरो मुंहिंजी तरफ़ हिन तरफ़ फॉल्स इंफॉर्मेशन जी तरफ़ ध्यानु हलियो वियो अवां ॾिसो पिया त अॼुकल्ह नाओ डेज़ कुझु अहिड़ी फॉल्स इंफॉर्मेशन आहे जेका बिना दस्तीक जेका आहे न उहा पोस्ट कई पई वञे ऐं उहा पई शेयर पई थिए इन खे कीअं पिया ॾिसो ऐं इन एक्ट में इन जी जेका आहे कहिड़ी सज़ा थी सघे थी ऐं असांजे जेके व्यूअर्स आहिनि हुनखे कीअं बचणु घुरिजे का बि फॉल्स इंफॉर्मेशन खे स्प्रेड करण खां
1: सर ॾिसो पीका एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट करे हिकिड़ो सेक्शन इंसर्ट कयो सेक्शन 25 उनमें 25A में इहो लिखियो वियो की फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करण बि कानून जुर्म आहे. हाणे ॾिसो माण्हू अवां बि फेसबुक यूस था कयो, मां बि कयां थो, अमीर खां अमीर माण्हू बि करे थो, रेडी वारो बि करे थो, पाबंदी न आहे. हाणे मसलो इहो आहे फेसबुक हिकिड़ो ग्लोबल विलेज आहे जेके लंडन वारो बि ॾिसे थो, अवां बि ॾिसो था. रिसेंटली इस्लामाबाद में हिकिड़ो वाकियो थियो पिम्स जो, 15 मासूम ॿार सड़ी विया. पर मुस्तफ़ा कमाल जेको हिन महिल मिनिस्टर आहे उनजी 2006 जी वीडियो हलाए करे माण्हू चवनि था की हाणे साईं हे
0: इन सां लिंक पई कई
1: वञे जी जी जी मुस्तफ़ा कमाल माण्हू सां हे शो, त इहे ग़लति आहे. ऐं फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर करण बि कानून जुर्म आहे. तव्हां तहक़ीक़ त कयो, माण्हू बदकिस्मत ई आहे. माण्हू ॾिसो कुझु अगरि को ग़लती सां कंहिं माण्हू जे हली थो वञे न, की फलाणो माण्हू मरी वियो आहे, असां वटि हुनजी असां जल्दी जल्दी वेरिफिकेशन करण खां बजाए असां
0: शेयर था कयूं.
1: फेसबुक बि हिकिड़ो कानूननि माण्हू खे समुझणु खपे. तव्हांजी फेसबुक आईडी, तव्हांजो फेसबुक जो जेको सॼो सिस्टम आहे, तव्हां हिकिड़ी एंटिटी आहियो. कानून जी नज़र में तव्हांजी आईडी जा ज़िमेदार अवां आहियो. अवां अगरि का ग़लति शइ शेयर था कयो त अवां जे ई खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई थी वेंदी.
0: हुनजी
1: बि सज़ा आहे 3 साल.
0: हा सर, इहो मतिलब देट मीन त जेका बि फॉल्स इंफॉर्मेशन आहे बिना के तस्दीक जे माण्हू शेयर न करे, इवन कंहिंजी पोस्ट खे बि जेको आहे अगरि उहा शेयर करे पियो त उहो बि इन्वॉल्व थो थी वञे.
1: सर असां वटि छा आहे, असां वटि साफ़ इनखां वधीक असांखे साफ़ थियण जो शौक़ु
0: हर को थी वियो आहे. बिल्कुलु सही
1: था, माण्हू कोशिशि करे ॾिसो साफ़ जो पंहिंजो असांजी सोसाइटी में
0: वॾो
1: हिकिड़ो किरदारु आहे.
0: बिल्कुलु
1: साफ़िन हज़रात पंहिंजी जाननि जा नज़रा बि नज़राना बि ॾिना आहिनि हिन मुल्क में, इलाही शयूं आहियूं. मगर पोइ बि तहक़ीक़ करे माण्हू तहक़ीक़ करे पोइ हुन सोर्स छा आहे हुन इंफॉर्मेशन जो, त हर शइ खे पहिरों तहां तहक़ीक़ कयो पोइ शेयर कयो. इहो मतिलबु न आहे की हेठो हिकिड़ो बटन लॻल आहे शेयर. रिसीव्ड एंड शेयर वारी पॉलिसी असांजे पाकिस्तान लाइ नुक़सानदेह
0: आहे,
1: असांजे लाइ न, असांजे मुल्क लाइ नुक़सानदेह. असां हर उहा नेगेटिव शइ शेयर करण लाइ तयार आहियूं जंहिंजो इम्पेक्ट पूरी सोसाइटी ते ख़राब थो
0: वञे.
1: ॾिसो अलाह ताला हिन मुल्क में पहाड़, आबशार, रेगिस्तान हर शइ ॾिनी आहे. असांजो मुल्क खुशहाल मुल्क थी थो सघे, मगर असां में छा आहे फेसबुक में हमेशह अनसर्टेनिटी
0: ॾेखारणु केयरफुल रहणु घुर्जे असांखे, बग़ैर की तस्दीक जे फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड न करणु घुर्जे. सर अगरि असां हिन ते अचूं पीका एक्ट में, हिन जो बि ज़िक्र थियल आहे, साइबर ब्लैकमेलिंग ऐं कंहिंजो प्राइवेट कंटेंट जेको आहे मिस यूज़ करणु, इन खे थोरो तव्हां डिटेल सां ॿुधाईंदा.
1: सर ॾिसो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन पर्सन, उनजी इज़त जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1947 में आर्टिकल 14 में वाज़े आहे की कंहिंजी तव्हां इज़त जेकी आहे मजरू नथा करे सघो. चार दीवारी जो एतराम करणो आहे. हाणे इन में पीका एक्ट में अचे थो डिग्निटी ऑफ पर्सन जो, उन में पर्टिकुलर सेक्शन आहिनि जंहिंमें डिग्निटी ऑफ पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करे थी. अगरि तव्हां कंहिंजा फोटोज या उन जे ख़िलाफ़ मिस इंफॉर्मेशन शेयर कयो था, ऐं तव्हांखे ख़बर आहे इहा मिस इंफॉर्मेशन शेयर करण सां हुनजी इज़त ते फ़र्क़ु पवंदो, हुनजी इज़त ख़राब थींदी, मजबूत थींदी, त इहो बि हिकिड़ो कानून जुर्म आहे जंहिंजी 3 साल सज़ा आहे. ऐं हिते इहो आहे की बिना परमिशन जे तव्हां फोटू वठी अपलोड था कयो वीडियो, इहो सोशल मीडिया जो ग़लति इस्तेमालु आहे. हाणे बकौल कानून जे मुताबिक़ असांखे हुनखे ॾिठो वञे त इहो बिना मर्ज़ी जे तव्हां नथा करे सघो.
0: ऑल राइट,
1: इन जो बि कानून आहे.
0: अच्छा सर, ईअं ॾिठो वियो आहे त कंहिं वटि कंहिंजी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हूंदी आहे त पोइ हुनखे ब्लैकमेल करे रहियो हूंदो आहे, तयारी हीउ कमु जा कयो न त असां हीउ पोस्ट कंदासीं, इहो तव्हां कीअं परे सो इहा इलीगल एक्टिविटी.
1: सर इन जी अगरि कंप्लेन पीका में कई वञे, साइबर क्राइम में थो अचे, इहो बि हिनखे तव्हां अगरि ॾिठो वञे त इहो बि हिकिड़ो विक्टम खे तंग करणु, हरास करणु, हरासमेंट में साइबर बुलिंग
0: जी जी,
1: साइबर स्टॉकिंग बि आहे, कंहिंजो पीछो करणु. अगरि तव्हांखे उहो माण्हू नथो पसंदि करे, जा का अहिड़ी ॻाल्हि आहे उहो तव्हां सां राब्तो नथो रखणु चाहे, हुनजे कॾहिं पढ़णु, हुनजी बि 3 साल सज़ा पीका एक्ट में आहे साइबर स्टॉकिंग जी. ऐं उन जो वाज़े तरीक़े सां हरास करण में, ॾिसो साइबर हरासमेंट में हिन में पीका में हुनजी लैंग्वेज खे साइबर स्टॉकिंग चयो वियो आहे.
0: ओके,
1: ऐं साइबर स्टॉकिंग में तव्हां हुनखे इंटेंशन विद कहिड़े हुन सां मोड सां अप्रोच था कयो, मोबाइल सां.
0: इंटरनेट जे थ्रू जी हा जी हा जी हा डिजिटल दैट मींस डिजिटल यस यस यस यस यस यस
1: हिकड़ो माण्हू चवंदा साईं तव्हां फिज़िकली मुलाकात न फिज़िकली तव्हां हुनखे नथा अप्रोच कयो तव्हां हुनखे अप्रोच था कयो ऑनलाइन थ्रू मॉडर्न डिवाइस में तव्हां स्मार्ट फोन आई फोन ॿियूं फोन आहिनि इहे वे ऑफ कम्युनिकेशन
0: आहिनि सर हींअर अॼुकल्ह इहो बि थिए पियो त डिजिटल जेके आहे न ए आई वीडियोस क्रिएट कयूं पियूं वञनि कंहिंजूं पोइ उन जे थ्रू कंहिंखे ब्लैकमेल पियो कयो वञे त इहो बि साइबर स्टॉकिंग सॉरी साइबर बुलिंग में पियो अचे
1: साइबर बुलिंग में अचे थो हिन जे लाइ फोरेंसिक हिननि जी लैब आहे जेकी एनसीसीआई हुनखे कंटेंट खे पंहिंजी तहवील में वरिती ऐं हिन जो अगरि उहो स्क्रीनशॉट कढी करे हुन कंप्लेन खे पंहिंजी ऑनलाइन तव्हां ज़रूरी न आहे असां वटि इहो हिकिड़ो शुक्र आहे की हिकिड़ी नयूं शयूं असां वटि इनवेंशन थियूं आहिनि आवाम जे लाइ तव्हां नथा अप्रोच करे सघो अहिड़ो टाइम आहे तव्हां ऑनलाइन कंप्लेन करे था सघो असां वटि इलाही इदारा आहिनि जंहिंमें ऑनलाइन कंप्लेन हलनि थियूं चाहे वफ़ाक़ी मुंसिब आहे
0: जी जी सर हाणे त इलाही ऑनलाइन जी आहे जी आहे
1: ॾिसो डिजिटल पाकिस्तान इहो ई आहे बसि फ़र्क़ु इहो आहे की माण्हू उन डिजिटल पाकिस्तान जो मिसयूज़ था
0: कनि
1: पाकिस्तान इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज़ बाए वे ऑफ ईज़ी तव्हां घर वेही करे पंहिंजा शयूं घुरायो था हाणे फूड पांडा छा आहे गर्मी में ॾिसो बाबर साहब गर्मी में घर खां ॿाहिरि वञी करे काई शइ वठी अचणु पर उहो छा फूड पांडा हिकिड़ी रजिस्टर्ड एप
0: आहे
1: ऑनर आहे उनजा हिकिड़ा क्रेडेंशियल्स आहिनि जेके पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कयल
0: सो बिल्कुल व्यूअर्स प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जारी आहे ऐं अॼु जे असांजे प्रोग्राम में टॉपिक आहे साइबर क्राइम एज़ वेल एंड एडवोकेट बिलावल हुसैन बलोच साहब असांजे स्टूडियोज़ में मौजूदु आहिनि फ़िलहाल हलंदासीं असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ॾांहुं असां सां गॾु रहिजो
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन ॾहनि सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक ॾहनि सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो
5: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रखंदा ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ 24 ਕਲਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹਲ ਰਹਿੰਦੋ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ OT, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਆਹੇ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਸਤੇ ਅਘ ਤੇ ਕਈ ਵਜੇ ਥੀ। ਵਧੀਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਨਾਨਾ ਸੋਲੰਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 210-31-43-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371800-3920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 0312-3401-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर इहो सबबु न बणंदो।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
5: बिलावल साहब, असां साइबर क्राइम ते ॻाल्हाए रहिया आहियूं। हींअर असां ईंदासीं ऑनलाइन फ्रॉड ते, ऐं मुंहिंजी मतिलब पॉइंट ऑफ व्यू सां ऑनलाइन फ्रॉड जेको आहे न, अॼुकल्ह तमामु घणो वधे पियो, स्पेशली जेके असां सोशल मीडिया जा प्लेटफॉर्म्स यूस कयूं पिया। त सभ खां पहिरियां त तव्हां इहो ॿुधायो त ऑनलाइन फ्रॉड आहे छा एक्चुअली?
6: सर, बेसिकली ऑनलाइन फ्रॉड इहो आहे के तव्हां सां असां काई कमिटमेंट कयूं था, तव्हांखे ॾेखारियूं था काई शइ, के सर हे ऑफर आहे, हिन ते का गाॾी आहे, का स्पेयर पार्ट्स आहिनि, का परफ्यूम आहे, का कपिड़नि जा जोड़ा आहिनि, इहे तव्हांखे असां ऑनलाइन ॾेखारे करे तव्हांखे चवनि था हाफ पेमेंट कयो, फुल न, हाफ पेमेंट।
5: सही,
6: फुल विल बी डन ऑन कैश ऑन डिलीवरी।
5: कैश ऑन डिलीवरी जी।
6: त पोइ उहो असां तव्हां खां पैसा वठी करे असां रिस्पोंड न कयूं, ऐं उहो तव्हां जेॾी महिल तहक़ीक कयो त उहो हुजे ई फ्रॉड, ऐं हुनजो को सिर पेराह ई कोन हुन शइ जो, त इहो हिकिड़ो ऑनलाइन फ्रॉड आहे। ऑनलाइन फ्रॉड में स्कीम्स बि तव्हांखे माण्हू चवंदा की साईं असां वटि स्कीम आहे, असां वटि हीअ स्कीम आहे या असां वटि उहा स्कीम,
5: मुख़्तलिफ़ ऑफर्स पिया ॾियनि। मतिलब
6: ऑफर्स हिन करे हूंदियूं सर, त उहो तव्हांजे माइंड खे कैच कंदा आहिनि की तव्हां किथे फासो।
5: ओके,
6: स्कैमर्स आहिनि न
5: सर। इन में तव्हां इहो बि ॾिठो हूंदो त असां यूट्यूब ते कुझु वीडियोस ॾिसूं पिया त विच में अहिड़ा एड्स पिया अची वञनि, पोइ हुन में इहे ऑनलाइन ऑफर्स पियो ॾिनी वञनि, तव्हां हींअर ई जेको आहे लॉग इन कयो, तव्हांखे 50,000 ताईं कर्ज़ो थो ॾिनो वञे, अहिड़ी तव्हां वीडियो ॾिठी हूंदी।
6: बिल्कुलु इन जा माण्हू शिकार थिया अथव।
5: ओके, ओके।
6: सखर जा कुझु माण्हू मूंखे यादि आहिनि, हुननि को अहिड़ी लिंक हुई की हाणे तव्हां हिन में रजिस्टर थियो, हाणे जो हाणे अव्हांखे 15,000 मिलंदा।
5: अच्छा,
6: हुननि पंहिंजो हुन में NIC ॾिनो ऐं पंहिंजो एड्रेस वेड्रेस ॾिनो, ख़बर पई की हुननि जे ॿ टे हुननि जो पैसा अचण ई जाइ ते हुननि जे ई अकाउंट में जेकी ईज़ी पैसा में पैसा पिया उहे बि हलिया विया। त इन्हनि शयुनि खां माण्हू ॾिसो बाबर साहब सेंस नथो
5: थिए,
6: तव्हां काई हिकिड़ी वेबसाइट डाउनलोड कयो, हुन जा तव्हांखे पैसा मिला, सेंस कीअं आहे, वेबसाइट कीअं कमाए ॾींदी
5: सर? इहे अक्सर छा पिया करनि, इहे ऑफर्स ॾेई पोइ जॾहिं हुते डेटा इनपुट कयूं पिया न पाण, पोइ उहे डाउन पई थी वञनि लिंक्स। मतिलब हू पंहिंजो कमु करे पिया वठनि, असां खां जेको आहे न डेटा उहो कलेक्ट करे पिया वठनि। अच्छा, सेकेंडली सर, इन ते ऑनलाइन फ्रॉड ते कुझु जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त प्री पेमेंट करे पिया वठूं, पोइ ख़बर पई थिए बाबा भई फ्रॉड आहे, त इन जो जेको आहे त कहिड़ो जेको आहे त इम्पेक्ट थो पए, स्पेशली जेके ऑथेंटिक वेबसाइट्स आहिनि उतां माण्हू शॉपिंग करणु चाहींदा आहिनि, पोइ इन्हनि खे ॾिसी न करे सघंदा
6: आहिनि। कॉमन स्कैमर्स एॾा वधी वेंदा आहिनि ऐं तव्हांखे मुख़्तलिफ़ स्कीमियूं अकाउंट हैकिंग जे ज़रिए तव्हांखे फ्रॉड करे इन जो वडे में वडो नुकसान थे तो जो रियल मानू आ है जेकी जिया असाजी अगर चे जी कोई भी ब्रांड कड़ा भी अस मल्टीनेशनल ब्रांड्स अस जूतन जा भी ब्रांड्स पाकिस्तान में कपड़न जा भी हाँ माशाल्लाह ढाढ़ा ब्रांड्स पाकिस्तान में सखर में मिल्ट्री रोड भर
7: पी
6: इन जो नुकसान बिजनेस जो नुकसान उन ब्रांड्स के तो थे जेके इन जो माने निशान होता थे
7: ओके
6: अगर मासा को मानू फेक थी करे तो कि मां बुनेंजा जो ब्रांड यूज कर मां के हो तो करे तो मां रियल बुनेंजा जी वेबसाइट से कदे भी ना वेनम इन करे वरी को मां चाहा तो कि थिंक बिफोर
7: ओके
6: ओपनिंग एनी लिंक ओपनिंग
7: मींस ऑथेंटिसिटी ऐसा दिसी बैठा हूं तो वाकई ऑथेंटिक वेबसाइट आए या नहीं
6: आए जितना भी ब्रांड्स है ना जी पांचों वेबसाइट आहन ऑनलाइन शॉपिंग्स भी आहन
7: यस यस उन जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वे अच्छा इन में सर ही छा कंदा तव त कुछ जेके लास्ट वाला डिसीजन जे फॉर एग्जांपल .com आ तो उनके .cc दा करे वठन वो इन मा मानु सुनयाने सगन था त ई जेकी आ न ऑथेंटिक वेबसाइट कोने
6: सर इन एक सिंपल एग्जाम्पल मान
7: जी जी
6: अक्सर तक मोबाइल में मैसेज आयो हों तुझा बेनजीर इनकम सपोर्ट में पैसा आया हाँ मुझे बुधा अस कहीं अप्लाई न किया बेनजीर इनकम सपोर्ट में
7: नालो
6: आया पैसा जीतिया हाँ
7: इस नंबर पे कॉल करें
6: फोन कॉल आई मां कोर्ट
7: वहां
6: असाजे मानून के भी थोड़ो सोचण खपे हे स्कैमर्स जेके अव उन टाइम से तक कॉल कंदा इनके एडो इन दिसो ना ये ब्रिलियंट दे आर ब्रिलियंट प्लेयर्स ऑफ द डिजिटलाइजेशन एंड स्कैम उन टाइम कॉल कंदा या तो गाड़ी हलाइंदा हूं या तो ऑफिस में होंद या तो कें छण वा हों उन टाइम में तक फोन कर आइडेंटिटी घुर्दा तुम ओटीपी घुर्दा मू हरीड एंड बरीड वाले सिचुएशन में ये कॉम्प्रोमाइज था नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कंदो तांजी आइडेंटिटी हली वेंदी
7: यस सर सही पे अचो सो सर इनके तां जी गाल कई त जेकी फ्रॉड कंदड़ आहिनि या माण्हुनि खे धोखो ॾियनि पिया पोइ इन टाइम ते कीअं माण्हुनि खे मोहतात रहणु घुरिजे
6: सर इहे माण्हू तव्हांखे ऑफर्स ॾींदनि पर हिननि जो बेसिकली इशू इहो हूंदो आहे तेसि ताईं तव्हांजी डेटा ऑप्टेन नथा करे सघनि जेसि ताईं ओटीपी तव्हां शेयर नथा कयो
7: ओके
6: त ओटीपी आहे वंस टाइम पासवर्ड उहो कॾहिं बि कंहिंसां बि शेयर
7: न कयूं शेयर
6: पिन आहे NIC आहे कॾहिं बि शेयर न कयो तव्हांजी इहे कंडेंशियल हिननि डबल लॉक्स हूंदा आहिनि ॿिया टिया इहे सॼियूं शयूं तव्हांखे पाण वटि ताईं रखणियूं आहिनि कोई बि घुरे तव्हांखे अक्सर कोरियर सर्विस वारा बैंकिंग
7: वारा
6: तव्हांजो अकाउंट मूंखे हिकु दफ़ो फोन
7: आई
6: साईं असां स्टेट बैंक मां था ॻाल्हायूं तव्हांजे अकाउंट जी हिकिड़ी ट्रांज़ेक्शन थी आहे मशकूक
7: आहे
6: तव्हां अचो असां तव्हांजो महिमा बाबा कोर्ट में आहे अची तव्हां असां अची नथा सघो त असांखे तव्हां पंहिंजो बैंक जो पिन ॿुधायो चार डिजिट सां
7: ओके
6: मां चयो मां त नथो ॿुधाए सघां कॉम्प्रोमाइज़ थी वेंदो साईं असां तव्हांजो अकाउंट हो था कयूं ब्लॉक था कयूं हाणे इहो छा आहे माण्हू जे दिमाग़ में पैनिक क्रिएट
7: करणु
6: वरी मुख़्तलिफ़ इदारनि जा नाला खणण खे असां हिन इदारनि मां पैनिक माण्हू जे दिमाग़ में जॾहिं पैनिक क्रिएट थी वेंदो आहे माण्हू पंहिंजे हार
7: मञी
6: कॉम्प्रोमाइज़ बाबर साहब कॉम्प्रोमाइज़ न आहे करणो कॉम्प्रोमाइज़ तव्हां कंदो तव्हांजो सॼो डेटा हली वेंदो ऐं उहो अल्टीमेटली तव्हांखे नुक़सानु आहे मां हुनखे चयमि बाबा तव्हां ब्लॉक करे छॾियो चई साईं असां FIA में आहियूं ब्लॉक
7: कंदासीं
6: मां अचां थो विज़िट करण थो अचां अदर मुंहिंजो पाण नंबर बंदि कयो आहे मां कॉल करण कोशिशि कयमि त उहो नंबर ई न पियो लॻे
7: इहो
6: हिकिड़ो इशू हूंदो आहे की जस्ट दे केन कॉल अस असां हुन नंबरनि ते कॉल छो करे मालवेयर हिकिड़ो सॉफ्टवेयर यूस कंदा
7: आहिनि
6: हो तव्हांखे फोन करे तव्हां खां डेटा वठी था सघनि तव्हां हुनखे फोन नथा करे सघो
7: ओके ऐं सर जीअं डेटा ते ॻाल्हाई तव्हां चयो त को बि पिनकोड असांखे शेयर न करणु घुरिजे एज़ वेल ऐं हीउ जेको स्पूफिंग थिए पई व्हाट्सएप अकाउंट जेके हैक थियनि पिया त इन ते तव्हां इहा सजेशन ॾींदव त मिसाल को मैसेज अचे पियो कंहिं बि ऑथेंटिक नंबर था खां छाकाणि त असांजा दोस्तनि जा अगरि अकाउंट हैक पिया थी वञनि उन्हनि खां मैसेज आयो था त इहो सम्झंदासीं उन्हनि मैसेज मोकिलियो आहे त असां उन्हनि खे इहो चई सघूं था यार वॉइस नोट खणी मोकिल त वॉइस नोट त मां सम्झा थो इहे न करे सघंदा हूंदा जेके
6: फ्रॉडुलेंट
7: कॉल न खणंदा एक्ज़ेक्टली
6: अगरि तव्हां खां को दोस्त घुरे थो प्री प्यारो तव्हां हुजत थो करे हुजाए दोस्त में तव्हांजी एतिरी हुजत हुजणु खपे तव्हां फोन कयो बाबा मां अची थो वञा पाण जेको हाल आहे
7: मैं अभी कॉल पे बात नहीं कर सकती सो बिल्कुल व्यूअर्स तव्हांखे जेको आहे मोहतात रहणु घुर्जे एडवोकेट बिलावल हुसैन बलोच साहब तमामु सुठा अव्हांखे जेके आहिनि त मशवरा ॾेई रहिया आहिनि जेके अव्हां जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि ऐं साइबर क्राइम खे जेको आहे त ईअं ई रोके सघिजे थो जेसि ताईं असां केयरफुल रहूं ऐं पंहिंजो डेटा जेको आहे स्पेशली उहो करे ॾियूं सर कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त अॼुकल्ह व्हाट्सएप ते जेको आहे सीएनआईसी जी कॉपीज असां शेयर करे छॾींदा आहियूं ऐं इन जो मिसयूज थिए पियो इन खे कीअं पिया ॾिसो ऐं इन ते तव्हां छा असांजे व्यूअर्स खे सलाह ॾींदो
6: सर इन ॻाल्हि में हिकु क्रेडिट असां गवर्नमेंट खे ॾियूं की असांजो जेको बि हाणे ट्रांज़ेक्शन मोड आहे उहो जेसि ताईं बायोमेट्रिक नथी थिए नथो थिए
7: ओके
6: न त पहिरों तव्हांजे एनआईसी ते मां तव्हांजे एनआईसी ते रजिस्ट्रेशन बि कराए पियो सघां तव्हांजे एनआईसी सां मां गाॾी बि रजिस्टर कराए पियो सघां हाणे तव्हां ॾिसो छॾो जेको एक्साइज डिपार्टमेंट आहे सिंध जो मूं वटि अगरि गाॾी आहे मां तव्हां सां तेसि ताईं ट्रांसफर नथो करे सघां जेसि ताईं मां बायोमेट्रिक नथो
7: करायां
6: जेसि ताईं
7: बायर
6: नथा कयो सो दिस दीज़ आर द टूल्स एंड टेक्निक्स एंड पॉलिसीज थ्रू विच दिस सीएनआईसी कैन बी not used for any fraudulent
7: all right matlab send kare ta sagan cnsi it's okay so short commercial break da halon pya podcast legal corner mein asan sa gad rahe jo

0: फसल की सरमस्त धरती
1: फातिया मेहरान सिंध की एक और पहचान।

0: कंदा पियो इवन के केडी
1: बैंक सा विंदो
0: असा बैंक दे नाले सा क्रॉस नाम के पर्टिकुलर हन बैंक हन बैंक बाकी बी गाल जेतरो भी हाने असा डिजिटल पाकिस्तान जे पासे वनु ता असा जे हर ट्रांजिशन असा जे थंब ते थी थे थंब असा जो कॉम्प्रोमाइज से सही न तो सके कोई कटे खणी वनी सकेला तो ता है पर मोबाइल
1: बैंकिंग स्पेशली सर ता प्रोग्राम जे गाल के सिम्स वगैरह जे दिनी पई वने पोइन जा अक्सर सिस्टम जे के डाउन थी वेना एंड ऑन द टाइम जे का ट्रांजिशन थी विंदी है सिम एक्टिव थी विंदी है पर हु चुना सिस्टम डाउन लगो पयो है पो जडे सा घर विंदा पो खबर पई जा त सिम ता सा नाले ते यूज पई थी
0: सर नवाबशाह में एकड़ी दीवान छोकरे जी सिम निकती
1: जी
0: हुन बायोमेट्रिक कराई हुन किचन बायोमेट्रिक ना आईया वो निकरी हो फ्रंच उनमो जगह तो उनजी सिम बे हम एक्टिव थी उनजी जितना भी अकाउंट में पैसा होया वो ट्रांजैक्शन थी भी वही
1: ऑल राइट
0: पर जदे उन कंप्लेन कई कंप्लेन उन एक महीने को पो कई कंप्लेन कई पर उन यो फायदो थियो कि टाइम लगदो आ पाकिस्तान
1: पेमेंट रिटर्न थी
0: मानू जदे गिरफ्तार थे उन पेमेंट रिटर्न कई हो मानू पकड़या मोबाइल जी ईएमआई नंबर सा
1: ऑल राइट
0: डिजिटल क्राइम थिंदो तो डिजिटल एविडेंस भी क्रिएट थिंदो हर सियाणो माण्हू काथे न काथे को न को किलो यूस कंदो आहे फासंदो आहे ऐं तव्हां सखर में
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: पीपुल्स पार्टी पिम्स थाने जी जांच रिपोर्ट पधरी करण जो मुतालबो करे छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पीपुल्स पार्टी की सेनेटर पलविशा खान चयो तो सभिनी जो गठ जोड़ है, शफाफ जांच किन थी लगे तो नंढन ऑफिसर मथा मलबो किरा वो वन ऑफिसर के कुछ नीन थाने जो शायदू मटाण की कोशिश की रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब मिलिया, पैसा किथे लगा, किन खर्च थे, ऑडिट कराई वे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पम्प्स के हवाले से नाकामियों को एतराफ़, मुल्की निज़ाम के भी बिटे मयार वालों करार दे छो। तकरीब के खिताब कदे मुसद्दिक मलिक चयो तो कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज करण नथा वन, नई कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूल में पढ़न था, इन फर्क के खात्मे तई निज़ाम ठीक न थींदो।
1: ये तहरीके इल्तफा इस वजह से है कि कई सब इसमें आकर हो गए। ये इल्तफा के बाद जाहिर है तो बहस मुबासा होगा और फिर ये बात आगे चलेगी।
2: सो बहस असा इन कर चाहूं था तो हर सिंध जो मानो जो है इन मामले से गालाइंदो अहम मामलो है। असा चाहूं था सिंध जा मानो बुधन उनके अस टेक्निकली तौर से अस मंडी को वी वरी इन रेजोल्यूशन भी पास कंदे।
0: पीपुल्स पार्टी पारा नवन सूबन यूनिट्स से बहस लाए सिंध असेंबली में पेश कल रथ जो दिफाव, ऐवान में विरहांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराने जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर शाह चयो तो सिंध असेंबली पहरी बे 6 भेरा ठहराव पास कर चुकी है, रिथ आनण जो मकसद भी मामले से गालण है। मोहम्मद अली मलकानी चयो तो नवन सूबन से बहस जो मकसद मौके पेश करण है, सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ ठहराव भी पास किया वेंदो।

मुल्की मैशत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बि टीह सैकड़ो मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यानु तरक़ीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त व्याज जी शरह बि 22% मां घटि थी 11% थी वई। आम माण्हूअ जी आमदनी में बि वाधि थी आहे। ख़िते में बि पाकिस्तान अहम किरदार हासिल करे चुको आहे।

0: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो जदीद हथियारनि जे ट्रायल्स जो मुशाहिदो कयो वियो। आईएसपीआर मूजिब फील्ड मार्शल खे इदारे जे मुख़्तलिफ़ शोबनि ऑपरेशन ऐं मक़ामी सतह ते तयार थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग डि॒नी वई। फील्ड मार्शल मक़ामी तौर ते तयार कयल जदीद हथियारनि जे टेस्ट ट्रायल जो बि मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियण ऐं मक़ामी पैदावारी सलाहियतुनि ऐं टेक्निक में जिदत जो बि अज़म वरचायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मरियल तनसीम बीएलए जो दहशतगर्दी वारो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सिस आपघाती हमले लाइ तयार कयल नंढे उमिरि जे ॿिनि छोकरनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। निगरनि जा पाबंदी मरियल तनसीम बीएलए बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर ज़िया लांगो चयो आहे त दहशतगर्द बलोच रिवायतुनि खे ख़तम करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दनि 16 सालनि जी ज़ैनब ऐं 12 सालनि जी फातिमा खे वरगलायो। निगरनि जा वालदीन बि हैरान आहिनि। ज़ैनब जे मुड़ुस खे दहशतगर्दनि मारे इल्ज़ाम फोर्सिस ते लॻायो। फोर्सिस जूं दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि। दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाब इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्लाह ताला जी वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोने

0: सहकारी बैंक बदीन रोड मातली। छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
1: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
0: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
0: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हाँ 2315525786
0: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज।
1: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
0: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GAFM 88 नेटवर्क ते। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

छॾियूं। ज़िमेवार करार ॾिनल एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 8 आफ़ीसरनि खे मुअतल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमलदारनि फ़ौजदारी कानून तहत बि कार्रवाई जो हुकुम। जांच रिपोर्ट अवाम लाइ पब्लिक करण जी हिदायत। ADPMS डॉक्टर इमरान सिकंदर, मुताहिर शाह, डॉक्टर अवेस अली शाह, डॉक्टर सादिया रियाज, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर नौशीना अमजद, असिस्टेंट डायरेक्टर PIMS सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान, DG इमरजेंसी सर्विस CDA डॉक्टर अब्दुल रहमान खे बि उहिदे तां हटायो वियो। जांच रिपोर्ट में ज़िमेवार करार ॾिनल आफ़ीसरनि ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई बि थींदी।

0: मुल्की मैशत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बि 30 सैकड़ो मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यानु तरक़ीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चयो त व्याज जी शरह बि 22 सैकड़ो मां घटि थी 11 सैकड़ो थी वई आहे। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाध थी आहे। खिते में बि पाकिस्तान अहम किरदार हासिल करे चुको आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
4: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
0: 0331252576।
7: जी हा, 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुब्तला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमालु करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगी ॾांहुं क़दम।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियणु, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड

0: सिंधी आहे.
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-200. कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
2: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली. डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी. औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन.
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी. यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे. निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी. वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी. मोबाइल नंबर 2310-3143-842.
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हो जाए।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।